FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह की 5:56 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री

0: के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में हमने आपको सुनवाई देश वंदना। अब लिए चलते हैं आपको भक्ति संगीत के संसार में और सुनवाते हैं शर्मा बंधु के स्वर में ये भक्ति गीत।

गीता रॉय के स्वर में आपने ये भक्ति रचना सुनी। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रही हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आपने आनंद उठाया कबीर दास रचित इस भजन का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है संतुलित खेती, स्वस्थ मिट्टी, अधिक उत्पादन। वाचक अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संतुलित खेती शब्द हम हमेशा सुनथन। संतुलित खेती का है आज जानबो। अगर स्वस्थ माटी रहे और उत्पादन भी ज्यादा लेना है, दोनों के बीच में मध्यम मार्ग का होते तो होते संतुलित खेती। आवा समझबो, हमर भारत के खेती आज ऐसा दुराहा में खड़े है जिहां जागत हुए प्रगतिशील किसान के आगो सबले बड़े सवाले होते कि माटी ला बचाया जाए या उत्पादन ला। पिछला कुछ दशक मा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मन हा खेती ला नवा गति दिन, एमा दो मत नहीं है। एकर से पैदावार बढ़ेस, किसान मन के आय में सुधार होइस और खेती ज्यादा लाभकारी दिखाए दिए लागिस। लेकिन अब एकर दूसर पहलू भी आगू आते। कतको किसान मन एला देखत है कि जिहा पहली कम मात्रा मा खाद उर्वरक दवाई से काम चल जात रहिस, बढ़िया पैदावार मिल जात रहिस है, अब ओला हर सीजन मा ओमा मात्रा ला बढ़ाए ला पड़त। दूसर तरफ अगर पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाए के बाद भी तेजी से बढ़त है। जैविक खेती माटी के सेहत पर बेहतर माने जाते, लेकिन एला अचानक से अपनाना हर किसान पर संभव नहीं है। कतको पैत पूरा जैविक खेती मा शुरुआत के जन बचर होते ओम उत्पादन घट सकत है, जेखर से किसान मन की जन आमदनी ही आय है वह प्रभावित होगी। आज यही कारण अधिकांश किसान एक ऐसा रद्दा के तलाश में है जो माटी ला बचाए भी और उत्पादन ला भी स्थिर रखे। असल में समस्या रसायन के उपयोग से नहीं है किसान भाई हो, बल्कि ओखर असंतुलित और लगातार बढ़त उपयोग से पैदा हुए समस्या है। जब खेती की हर समस्या के समाधान केवल अधिक केमिकल डाल के निकाले जाते, तब माटी के प्राकृतिक ताकत कमजोर होए लगते। माटी में मौजूद जैविक तत्व और सूक्ष्म जीव कम हो जाते, एकर से माटी की उर्वरता घटे लगते। एकरे परिणामे होते कि अगला फसल में पहली से ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक और दवाई ला डाले पड़ते। यही प्रक्रिया ला कतको विशेषज्ञ मन कही थे केमिकल कुचक्र। लेकिन यही बात करबो, एकर मतलब नो है कि भाई खेती में रसायन ला पूरा तरीका से छोड़ देना एकमात्र समाधान है। आज जरूरत है संतुलन के। किसान ला ये समझना हो ही कि माटी केवल उत्पादन के माध्यम नहीं बल्कि किसान के सबले बड़े पूंजी है। भाई माटी नहीं रही, भूया नहीं रही, कामा उपजाही अन्न ला। अगर माटी स्वस्थ रही तो उत्पादन घला हुआ लंबा समय तक स्थिर रही। लेकिन यदि माटी लगातार कमजोर होत रही तक कुछ साल बाद ज्यादा रसायन डाले के बावजूद पैदावार हा बढ़िया ढंग ले नहीं आवे, तो यही मेरे लिए मध्य मार्ग के सोच हा सामने आते आगू आते। एक ऐसा रद्दा जौन हा पूरा तरह से केमिकल आधारित खेती के समर्थन नहीं करे और न ही तुरंत पूरा तरह से जैविक खेती अपनाए के बात करते। एकर उद्देश्य ये होते कि किसान अपन सहूलियत के हिसाब से धीरे धीरे रसायन के मात्रा ला कम करे अपन खेती में, खेत के जरूरत के अनुसार उर्वरक के उपयोग करे ताकि जैविक तत्व ला माटी में वापस लाए जा सके, ओला जुड़े जा सके। गैर रासायनिक विकल्प मन ला भी अपनाना है। यही सोच ला आज किसान

0: संतुलित खेती के रूप में जानते ओला अपना था। संतुलित खेती के मतलब है केमिकल कम उत्पादन स्थिर, ताकि किसान अपन परिस्थिति और जरूरत के अनुसार बदलाव करे। कोनो किसान पहली साल 10% केमिकल कम करते है, कोनो 20% और कोनो 50%। ये पूरा ओखर जमीन फसल और अनुभव में निर्भर। हम हमेशा कहथन कि भाई खेती है विज्ञाने ल समझबो तो बढ़िया ढंग से होई। महत्वपूर्ण बात ये हो जाते कि बदलाव धीरे धीरे होई और उत्पादन में कोनो बुरा असर नहीं पड़े। विशेषज्ञ मन के मानी तो खेती में बड़े बदलाव आही तो तकनीक के पहली हमर विचार में हमर सोच माना चाहिए। जब किसान एक सीजन के पैदावार ला स्थिर रखते तो अवैया 10 साल भर माटी के बारे में सोचना शुरू करी, तब है वास्तविक बदलाव संभव होगी। माटी ला स्वस्थ रखना केवल पर्यावरण के मुद्दा नहीं, बल्कि किसान के आय भविष्य और ओखर अवैया पीढ़ी के सुरक्षा के भी सवाल है। एकरे बर आज खेती ला कोनो एक छोर मा खड़ा करके ओला बेचे के बजाय एक मध्यम मार्ग खोजे के जरूरत है। ऐसा रद्दा जिहा उत्पादन घलो सुरक्षित हो और माटी घलो धीरे धीरे अपन पुराना स्वस्थ रूप में लौट सके और तेजी से संतुलित खेती के सामाजिक अभियान जोर पकड़त है। अवैया समय में ही संतुलित खेती भारतीय कृषि के सबले बड़े ताकत बन के उभर ही। राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात के अंतर्गत आपने सामयिक सुझाव प्राप्त किया, संतुलित खेती, स्वस्थ मिट्टी, अधिक उत्पादन विषय पर। वाचक थे अभिनव गौरहा। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं। इस वक्त 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत करते हैं रामचरितमानस गान, गायक स्वर रविंद्र साठे का।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

रविंद्र साथी के स्वर में आपने सुना रामचरितमानस गान। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त हम बोल रहे हैं। सुबह की 6:45 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम नव विहान का। आज का विषय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम।

कार्यक्रम नव विहान में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज जिस तरह आप हमें किसी भी स्थान पर बैठकर अपने मोबाइल फोन पर सुन सकते हैं, उसी तरह किसी भी स्थान से अन्य सुदूर स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति को रुपए भी आसानी से भेजे जा सकते हैं। अपने फॉर्म्स, दस्तावेज, सब कुछ इंटरनेट के जरिए कहीं भी भेजे या जमा किए जा सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान और बेहतर बना दिया है। आइए श्रोताओं, आज हम बातें करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विषय में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहल है जो ऑनलाइन शासन, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से नागरिकों को जोड़कर लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है, उसे बेहतर बना रहा है। इसे सफल बनाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उमंग एक नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके द्वारा कई सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई हॉस्पिटल भी इस कार्यक्रम की एक पहल है, जो सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। डिजी लॉकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इन सभी सुविधाओं को शुरू और कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग सुविधा के द्वारा कई बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। आजकल UPI से लेन देन को भी कितना आसान बना दिया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ऐसे कई ऐप हैं जिनके जरिए सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को भी काफी फायदा हुआ है। श्रोताओं, संक्षेप में बस यही कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हमें सुविधाएं प्रदान करने और हमारे

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। आज सुबह कार्यक्रम लेकर आएंगे हम सुबह 7:05 पर गांधी चर्चा, सुनिएगा 7:20 पर। आज का विषय होगा धर्म की इज्जत, युवा श्रोताओं की पसंद युवा जगत, प्रस्तुत किया जाएगा 5:35 पर। आज की बात का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, साथ ही क्रम कौशल विकास और उद्यमिता के अंतर्गत आप सुनेंगे कोडिंग विषय पर जानकारी। 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा बेरा के गोठ का। आज का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट वर्मी वॉश लाभकारी होते। आज फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व और सावधानियां। इस विषय पर श्रोता फोन पर सवाल पूछकर अपने जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी से। संचालन करेंगे पंचू भैया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब जानकारी देते हैं संगीत से जुड़े कार्यक्रमों के विषय में। यादों के झरोखे से सुबह सुनेंगे 7:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, सुबह 10:30 पर। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 पर, और इस कार्यक्रम का शेष भाग सुनेंगे शाम 7:00। आनंद उठाएंगे आप कार्यक्रम रजनीगंधा का रात्रि 8:15 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में 8:00 आप सुनेंगे हंस राज हंस के गाए गैर फिल्मी गीत। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। आज आपको सुनवाएंगे बांस गीत दिलहरण यादव, शिवचंद्र यादव और साथियों की आवाजों में। साथ ही आप सुन सकेंगे ढोला मारू का किस्सा सुरुजबाई खांडे और साथियों के स्वर में। अभी आपने सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ये था कार्यक्रम विवरण।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में और 7 बजे हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा।

0: सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। ये एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह स्वागत सभी सुनने वालों का कार्यक्रम आज सुबह में। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हूं मैं, आपकी रेडियो मित्र प्रियंका बलानी। जानकारियों, सूचनाओं और संगीत के द्वारा आपको हमसे जोड़े रखने वाले इस कार्यक्रम की आइए करते हैं शुरुआत कुछ बातों के साथ। मानवता परमो धर्म, यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रोताओं, हमें मानव होने के नाते इस सिद्धांत को सदैव याद रखना चाहिए। समय पर या विपदा के वक्त किसी के काम आना भी मानवता है। अक्सर इसकी परख होती है ऐसे समय में जब लोगों को एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनने की आवश्यकता होती है। किसी

श्रोताओं, अगर वृहद स्तर पर बात की जाए तो देश दुनिया में कोई आपदा की या युद्ध की स्थिति हो, ऐसे में आपसी मतभेद भुलाकर या हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर मदद के लिए जो हाथ आगे आते हैं, सच्ची मानवता वहीं प्रकट होती है। श्रोताओं, रेड क्रॉस, इस शब्द को सुनकर हमारे जहन में कुछ ही बातें आती हैं, जैसे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य कर्मियों का एक समूह। लेकिन रेड क्रॉस केवल यहीं तक सीमित नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी या संगठन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या आपातकालीन परिस्थितियों में घायल सैनिकों, नागरिकों और पीड़ितों की बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा करना और उन्हें राहत प्रदान करना है। श्रोताओं, आज के दिन यानी 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। किसी भी दिवस को हर वर्ष मनाने का उद्देश्य यही होता है कि उस दिन को मनाने के उद्देश्यों की, उनके सिद्धांतों की पुनरावृत्ति हो, बार बार उसे दोहराया जाए ताकि उस खास दिवस का महत्व बरकरार रहे। आज भी हम दोहरा रहे हैं रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्यों को, ताकि हम सब में मानवता का भाव जागृत रहे। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी की स्थिति में हम सभी मदद के लिए आगे आए। श्रोताओं, कुछ ही समय की बात है जब कोरोना महामारी फैली थी, उनके लिए फिर भी आसान है उस कठिन समय को भूल पाना जिन्होंने सौभाग्य से इस महामारी के समय किसी अपने को नहीं खोया। लेकिन जिन्होंने इस महामारी से किसी अपने को इस वजह से खो दिया कि समय पर उन्हें कोई स्वास्थ्य सुविधा, कोई मदद नहीं मिल पाई, उनके लिए उस वक्त को भुला पाना बेहद मुश्किल है। इसी तरह देश दुनिया में कई बार युद्ध की स्थिति बन रही है। प्राकृतिक आपदाएं भी बार बार अपने प्रकोप से जनधन को हानि पहुंचा रही हैं। ऐसे वक्त में जो मानव फरिश्तों की तरह मदद के लिए आगे आकर मानवता का परिचय देते हैं, उन्हीं में से हैं रेड क्रॉस संगठन के कर्मचारी और स्वयं सेवक। दुनिया भर में ऐसे ही कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ प्रयासों को, उनकी दी गई सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं आज का ये दिन। इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने के पीछे जो लक्ष्य है, उसे यदि हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर ही समझ जाएं, यानी सदैव जरूरतमंद की मदद करें, सेवा भाव रखें, इंसानियत की भावना अपने भीतर जगाए रखें, तो सही मायनों में ऐसे दिवस मनाना सार्थक सिद्ध होगा। श्रोताओं, आपसे होंगी और भी बातें, लेकिन पहले ये संदेश।

0: शेखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आज के ट्रैफिक अपडेट।
2: नमस्कार दोस्तों, अब आप उमा शंकर पांडे से सुनेंगे यात्रा संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यद्यपि जिले की तमाम सड़कों में लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं सभी सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की बाढ़ सी आ गई है, फिर भी पूरे शहर में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार हमेशा यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात नियमों के अनुकूल चलें। मित्रों, स्थानीय पुलिस लाइन में चल रहे उर्स का आज दूसरा दिन है। शाम होते ही यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। आज ही यहाँ कव्वाली का भी आयोजन रखा गया है, अतः आज यहाँ कव्वाली का आनंद लेने बड़ा जन समुदाय एकत्र होगा। पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार के आसपास अर्थात सिविल लाइन तिराहा में तमाम प्रकार के वाहनों की बड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ लोग प्रायः गलत दिशा से वाहनों के साथ मैदान में प्रवेश करते हैं, जो अनुचित है, जिससे हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः सभी संभल कर चलें, सही दिशा में चलें, नियमों के अनुसार ही चलें। कव्वाली सुनने आने वाले लोगों से अनुरोध है अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन मैदान के बाहर सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़ा ना करें, पार्किंग व्यवस्था का लाभ उठाएं ताकि सड़क में यातायात की समस्या ना आवे। दोस्तों, सड़कों में वाहनों की तेज गति जान की दुश्मन सिद्ध हो रही है और इसमें दुख की बात यह है कि इसके शिकार युवा ही हो रहे हैं। ये सच है कि युवाओं में अपार शक्ति, जोश, उमंग, उत्साह होता है, किंतु यह भी सच है कि कहीं कहीं अति उत्साह घातक भी हुआ करता है। वाहनों का ओवर स्पीड जानलेवा साबित हो रहा है। एक दिन पूर्व ही तेज रफ्तार के कारण दो पहिया वाहन के अनियंत्रित होने से गिरकर तीन तीन लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना से सभी युवाओं को सोचना होगा कि उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। सचेत हो जाइए, आपका वाहन सीमित गति में ही चलाएं और सुरक्षित वापस घर भी आएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, आपको हम रोजाना बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आप घर से निकलने से पहले ही सतर्क होकर निकलें और स्वयं भी यातायात व्यवस्था को सहज बनाए रखने में सहयोग दें। यातायात से जुड़ी जानकारियों और नियमों से रूबरू रहना जरूरी भी है हमारी और सबकी सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, आज से शुरू हो रहा है वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। क्यों न इन दिनों में हम यातायात के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और जो लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाएं। इसके लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल या ईयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करें। सीट

0: बेल्ट और हेलमेट के उपयोग की आदत डालें। गाड़ी चलाते समय गति नियंत्रित रखें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, साथ ही ट्रैफिक लाइट्स को ध्यान में रखते हुए रुकें और चलें। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का सही इस्तेमाल करें। ऐसे ही कुछ सुरक्षा नियम हैं जो बेहद आसान हैं। हमें सिर्फ इन पर अमल करना है ताकि हम अपने साथ साथ कई अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि दुर्घटना से सावधानी भली।
1: ए भाई

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

वही थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे गांधी चर्चा। आज का विषय है धर्म की इज्जत।

0: अपने सृजनहार का साक्षात्कार कराता है। धर्म हमारे हर काम में समाया हुआ है, जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदायवाद नहीं बल्कि ये धर्म हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाइयत आदि से परे है। गांधी जी के एकादश व्रत में से अगर सर्वधर्म संभाव की चर्चा करें तो उनका मानना था कि जितनी इज्जत हम अपने धर्म की करते हैं उतनी ही इज्जत हमें दूसरों के धर्म की भी करनी चाहिए। जहां वृत्ति है वहां एक दूसरे के धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता, न परधर्मी को अपने धर्म में लाने की कोशिश ही हो सकती है, बल्कि हमें हमेशा प्रार्थना यही करना चाहिए कि सब धर्मों में पाए जाने वाले दोष दूर हों। अपनी पत्रिका हरिजन में 20 अप्रैल 1934 के अंक में एक जगह गांधी जी ने लिखा है,
1: मैं अस्पृश्यता के कलंक से अपने को मुक्त करने और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही हरिजनोद्धार के कार्य में रुचि लेता हूँ, और चूंकि मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसकी प्रतिष्ठा निष्कलंक बनाए रखने के लिए मैं व्यग्र हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अन्य धर्म भाई भी अपने आप को इन चीजों से मुक्त कर लें।
0: और अब प्रस्तुत है एक भक्ति रचना।

बापू की अंतःशक्ति अजेय थी। उनका दुर्बल शरीर विद्युत शक्ति का पुंज था। उसी की सहायता से वे विरोधी को अपनी ओर खींच लेते थे। एक बार जो उनके संपर्क में आया सदा के लिए उनका हो गया। गांधी जी की वाणी कोमल, बुद्धि विशाल और तेजपूर्ण, ज्ञान अपरिमित और अनुभव अद्वितीय था। ये एक आश्चर्यजनक बात थी कि उनकी मानसिक शक्तियां जीवन के अंतिम दिन बढ़ती ही गईं। विकट से विकट समस्या को सुलझाना और एक सर्वथा मौलिक मार्ग खोज निकालना उनके लिए साधारण बात थी। कठिनाइयों का सामना करने में उन्हें आनंद आता था। गांधी जी का ये जीवन दर्शन सदैव हमारा पथ प्रदर्शक रहे। इन आस्थाओं के साथ आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न करते हैं।

आपने सुनी गांधी चर्चा, विषय था धर्म की इज्जत। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब आनंद उठाइए कार्यक्रम यादों के झरोखे से का।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत कई मधुर और लाजवाब गीतों से गुंजायमान होता आया है। कुछ फिल्में सिर्फ अच्छे गीतों की वजह से ही हिट हो जाती हैं। फिल्मों में बीच बीच में समय समय पर कुछ गीत फिल्माए जाते हैं, जिससे दर्शकों का मनोरंजन होता रहे और फिल्में बोझिल सी ना लगें। आज हम आपको कुछ ऐसे गीत सुनवाएंगे जो उन फिल्मों के, जिनसे ये लिए गए हैं, शीर्षक गीत हैं, यानी टाइटल सॉन्ग्स हैं। टाइटल सॉन्ग्स हर फिल्म के लिए एक खास अहमियत रखता है और फिल्मों के हिट होने के पीछे भी कई बार टाइटल सॉन्ग्स का ही हाथ होता है। श्रोताओं, आइए शुरुआत करते हैं फिल्म आवारा के इस टाइटल सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम की। गीत गाया है मुकेश ने, शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म आवारा का गीत। आइए एक और टाइटल ट्रैक आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल देके देखो से।

0: 4 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

14वीं का चांद फिल्म का शीर्षक गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया रवि ने। महिला सभा हेतु आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता क्रम फोन पर आधारित है। दूसरे मंगलवार 12 मई 2026 5:35 को इसका प्रसारण किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 11 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे से 4:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा आंखों की देखभाल कैसे करें। विषय विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति आचार्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 0775226592 और 3100026। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त हमारे श्रोता आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से का। आज आपको कार्यक्रम में हम ऐसे गीत सुनवा रहे हैं जो हैं कुछ फिल्मों के टाइटल सॉन्ग्स यानी शीर्षक गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म तेरे घर के सामने। फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। एसडी बर्मन की तर्ज रचना है हसरत जयपुरी की।

0: बक्स में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद

0: टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सूचना सुनिए। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के नवीन भवन में 11 मई 2026 शाम सुबह 10:30 से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं जिला बिलासपुर से व्यवसाय विद्युतकार, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मोटर व्हील, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कोपा एवं वेल्डर के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षणार्थी आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर अप्रेंटिसशिप विभाग में संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

झनक झनक पायल बाजे फिल्म का शीर्षक गीत आपने सुना उस्ताद आमिर खान और साथियों के स्वर में। शब्दकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार वसंत देसाई। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गुमनाम का शीर्षक गीत। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म गुमनाम के इस मधुर गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति

0: लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK की विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में

0: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली

0: में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain and

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, चूंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओं, हमारा छत्तीसगढ़ यूं तो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ कई तरह की बोली और भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ी का प्राचीन व्याकरण एवं समृद्ध साहित्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार, शोध और अनुवाद का लक्ष्य सुनिश्चित कर 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
0: इसी कार्य से जुड़े हुए हमारे साथ आज इनसे मिले कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रभात मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनसे आज हम जानेंगे इनके बारे में और जानेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में। साथ ही छत्तीसगढ़ में इनके कई और भी कार्य हैं, तो इनसे आज हम जानेंगे इस बारे में। प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद रमाशंकर जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
2: ऐसे है, पहले सभी श्रोता साथी मंडला में जोहार करता हूँ और आकाशवाणी रायपुर के भी मैं हृदय ले आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही साथ जो आज विषय पे हमारे मन के गोड बात होना है वहाँ विशेष रूप से जो चीज ला आप अभी पूछे हम और से, तो का है कि छुरिया राजनांदगांव मोर जन्म है और वहाँ के संस्कार धानी में जो हमन संस्कार पाए हैं ओला पा के हमन हाँ अपन ये आज के ये जो हमार दायित्व है जो आयोग के मिले है, तो वो ओला आगे और जो उद्देश्य है ओला हमन आगू बढ़ात हन, और साथ ही साथ हमार मन के जो प्राथमिक शिक्षा है सब हमार रायपुर में हो है, और ओकर आगू के जो शिक्षा है महाविद्यालय शिक्षा वो दुर्गा महाविद्यालय से हो है, और जो मैं परा स्नातक जो करे हूँ वो है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला रायपुर से करे हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त जो शैक्षणिक जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि हम चूंकि छत्तीसगढ़ महतारी के जो ओकर मन ओकर द्वारा जो प्रदत्त हमार जो संस्कार है ना ओकर छाँव में जो हमन पले बढ़े हैं, तो वही भाखाला हमन हाँ यहाँ विस्तार दे के प्रयास करत हन पूरा प्रदेश में। तो इस विषय को लेकर के बस इतना ही यहाँ पे अपने श्रोता साथियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो राजभाषा जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है ये विधानसभा में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसको उसका भी उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, और वो है 2007 में वो पारित हुआ था, और वो जो अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ ही को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, और विधानसभा में पारित होने के फलस्वरूप यह जो है राजभाषा के रूप में और राजभाषा के स्वरूप के साथ आज पर्यंत तक और आगे भी इस पे हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी के अतिरिक्त इसे अंगीकृत करने के लिए उपबंध किया गया है। तो मतलब आयोग जो है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वही कि हमारी जो भाषाई जो समृद्धि है, भाषाई जो हमारी विरासत है उसको समृद्ध करना, संरक्षण देना और संवर्धन देना, जिसमें सरगुजा से लेकर के हमारा जो नीचे जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आदिम बोलियां जो हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हमारा आयोग का मुख्य हेतु है।
0: छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित और संगठित करने में आपका क्या योगदान रहेगा?
2: देखिए, इसमें हमारी आयोग की जो महती भूमिका है वो

0: जिसमें भाषाई जो विरासत है उसका दस्तावेजीकरण करना, उसको समृद्ध करना और प्रकाशन की जो स्थिति है उसको यहाँ हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो साहित्य जो समूह है उनके द्वारा लिखी जाने वाली छत्तीसगढ़ी में पुस्तकें जो हैं उसका प्रकाशन करना, ये आयोग का महती उद्देश्य है और आयोग इस कार्य में सतत लगा हुआ है। प्रकाशन के द्वारा लेखकों को छत्तीसगढ़ी भाषा में वो जो लिख करके जो अपना साहित्य चाहते हैं कि वो जनमानस में वो जाए आयोग के माध्यम से, तो इसके लिए आयोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में ओकरमन के प्रकाशन कर रहे थे साहित्य के, आओ ओला पाठक तक कैसे पहुँचाए, पढ़िया मन तक कैसे पहुँचाए, और हमारे जो अध्ययन करने वाला छात्र छात्रा मन हैं, और हमारे बहुत सारा हमारे आम जनता तक वह कैसे सर सुलभ हो गए, एक लिए भी हम यहाँ चिंता करा था। और आयोग है छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से लेखक मन के जो कृति है वह प्रकाशित करके वह सुलभ और उपलब्ध करा थे। ये वहाँ आयोग है सतत लगे हुए है। साथ ही साथ जो एक जो बहुत मुख्य जो औ एक वो है कि राजकीय कार्य में कैसे हम और अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा के हम कैसे उपयोग करें, ओकर लिए आयोग है समय समय पे शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय में जो मन पदस्थ है अधिकारी मन है कर्मचारी मन है वो मन ला भी प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी के लिए जो प्रशिक्षण है वो है आयोग देते।
1: तो प्रभात जी अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, तो क्यों ना प्रभात जी हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लें और आपकी पसंद का एक गीत सुनें।
0: मेरी पसंद का एक गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है और सर्वाधिक पसंदीदा गीतों में से एक है किशोर कुमार का फिल्म नमकीन राह पे रहते हैं, वो हमारे श्रोता साथियों को आप सुनाइए।
1: जी जी बहुत अच्छा गीत है, तो आइए श्रोताओं प्रभात मिश्रा जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोता, इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रभात मिश्रा जी से, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं और वेटलैंड संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी को संरक्षण करने का जो एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसके साथ ही आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, तो पत्रकारिता में निष्पक्षता को आप कैसे देखते हैं?
1: पत्रकारिता में निष्पक्षता की जो बात आपने पूछा है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्पक्षता जो है पत्रकारिता की एक अनिवार्य शर्त है। हमको इस बात के लिए कृत संकल्पित रहना चाहिए कि पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो पाठकों तक और उस विषय को यथा स्थिति स्वरूप में तथ्य के साथ उसे प्रस्तुत करना, और उसमें जो भी हमारा जो दृष्टिकोण है और उस विधा में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए या ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम पत्रकारिता हम जब कर रहे हों और पत्रकारिता में जिस प्रकार की हम निष्पक्ष पत्रकारिता की जब हम बात कर रहे हों, तो उस विषय के साथ और उस रिपोर्टिंग के साथ हमारा वो भाव दिखना चाहिए हमारी भाषा में, हमारी प्रस्तुति में, हमारे उसमें शब्दों में, कि वह विषय वस्तु के साथ न्याय करते हुए वो दिखाई दे। न्याय की जिम्मेदारी तो खैर हम एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो पाठक वो तय करेगा, लेकिन एक पत्रकार को ये हम कहना चाहिए उसका वो दायित्व तो है कि वो विषयों को यथा स्थिति यथा स्वरूप में वैसा का ही वैसा प्रस्तुत करे। शेष जो है उसका निर्णय क्या होना है क्या नहीं होना है वो पाठक पर निर्भर करता है।
0: तो प्रभात जी, पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो इसके कई आयाम हो सकते हैं, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख आयाम हो सकते हैं?
1: देखिए, पत्रकारिता के जहाँ तक आयाम की हम बात करते हैं, तो पत्रकारिता का एक बहुत ही व्यापक एक संसार है, और उस व्यापक संसार में पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं तो वो मूल्यों की पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिसमें कहना चाहिए वैल्यू बेस्ड, वैल्यू की हम बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं।

0: और हम एक तरह से पत्रकारिता को एक प्रकाश स्तंभ की तरह लेते हैं, एक मशाल की तरह लेते हैं कि जिसके प्रकाश में हम सब जो हैं, एक जो हमारा समाज का जो हमारा एक आदर्श जो मार्ग है समाज को पुष्पित पल्लवित करने का, जिसमें समाज जीवन के सारे रंग सारे आयाम बहुत व्यवस्थित ढंग से हों, उसमें व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें यदि हम देखें तो पत्रकारिता जो है अपना एक अहम योगदान देते हुए दिखाई देती है। और पत्रकारिता ने ऐसा बहुत कुछ किया भी है कि आज समाज में समाज को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, एक अच्छा अच्छी रचना करने के लिए, इस हेतु समाज में जिस प्रकार की पत्रकारिता हमारे अभी हमारे समाज में हमारे देश में हमारे प्रदेश में हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहिए, सार्थक लाभ जो है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जो है पत्रकारिता का जो संदेश है, मूल्यधारित पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, उसका संदेश जो है बहुत अच्छा गया है और उन कार्यों की परिणति जो है समाज हित में भली भांति दिखाई देती है। क्योंकि हम यदि हम बात करते हैं अपने व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए, तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता को मतलब एक चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का।
1: जी जी जी जी प्रभात जी, तो प्रभात जी हम आप चलते हैं फिर से एक बार राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की तरफ। तो पारंपरिक विविधताएं हमारे छत्तीसगढ़ में काफी हैं, तो इन विविधताओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को स्थान दिलाना कितना आवश्यक है?
0: बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें भी इस बात का आग्रह किया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले, उनको भी जो है कहना चाहिए कि उनको उनकी मातृभाषा में उनको दिया जाए। तो इसका आशय क्या है कि मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उन चीजों को अच्छे से समझेगा, और अच्छे से समझेगा तो उन चीजों को अच्छे से वो अभिव्यक्ति दे पाएगा, और अभिव्यक्ति देगा तो वो कहना चाहिए अपनी जो सांस्कृतिक जो समझ है, अपने प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, जो और भी जो हमारी पहचान है, अपनी अस्मिता है, उससे वो सीधे कनेक्ट हो पाएगा, सीधे संबंधित हो पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी जो मातृभाषा है उसमें उसको जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। विशेषकर जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम ये देते हैं मातृभाषा में, तो बच्चा जो होता है वो बेहतर वो आत्मविश्वास के साथ अपने स्वयं को समझता है और जिस शिक्षा को वो ग्रहण करने जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाता है और संस्कृति से भी वो अच्छे से जुड़ पाता है।
1: तो प्रभात जी, जब हम बात करते हैं राजभाषा की, तो वो किसी प्रादेशिक स्थान होते ही उसकी जो प्रमुख होती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रादेशिक भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम राजभाषा को महत्व देते हैं, इसमें कहीं हम हिंदी को ना खो दे, ऐसा आपको क्या लगता है?
0: नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी विषय कहीं कुछ भी नहीं है खोने का। देखिए, होता यह है कि हमारा जो भाषाई जो संसार है वो बहुत समृद्ध है, और आप देखते भी होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो बहुभाषी कहना चाहिए राष्ट्र है। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं और भाषाओं के साथ साथ बोलियां भी बहुत सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं का जो स्वरूप है और भाषाई जो रचनात्मकता है वो समन्वयकारी है और समन्वय के साथ साथ समरसता लिए हुए है। इसका आशय इस ढंग से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाषाई जो संसार है वो अस्तित्व और सह अस्तित्व के आधार पर हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ समन्वय है भाषाओं को लेकर के, और इसी समन्वय के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको हमको समझना होगा और इसको समझते हुए आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं।

0: समन्वय के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको हमको समझना होगा और इसको समझते हुए आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। और भाषाई जो समृद्धि है, जो हमारी भाषाई विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी हो, हमारी अन्य जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, इन सब में एक जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन का एक परिवार जो होता है, उस प्रकार का संबंध लिए हुए है। और जो कहना चाहिए, परिवार में जो एक भाव होता है, उस भाव के आधार पे ये हमारा जो भाषाई जो है, आचार विचार जो है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। निर्विवाद रूप से बढ़ रहा है और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बढ़ रहा है, सांस्कृतिक चेतना के साथ बढ़ रहा है, एक समाधानकारी विषयों को लेकर बढ़ रहा है और काफी कहना चाहिए अस्तित्व और सह अस्तित्व का भाव लिए बढ़ रहा है।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे, वेटलैंड क्या है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, बाहर जो है भीषण गर्मी है, तपिश है और एक तरह से कहना चाहिए गर्म हवाओं के जो झोंके हैं, थपेड़े हैं, वो हम सबको ये एहसास करा रहे हैं कि गर्मी कितने चरम पे है। और उसका सीधा प्रभाव हम जलचर, थलचर और नभचर, जो हमारा जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम जब बात कर रहे हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड का आशय जो है हिंदी में वो ये है कि हम उसे नम भूमि बोलते हैं, जलोद भूमि भी बोलते हैं, दलदली भूमि भी बोलते हैं। और किसी भी कहना चाहिए क्षेत्र में, किसी भी पर्यावरणीय संतुलन के लिए वेटलैंड का, जलोद भूमि, नम भूमि का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे वेटलैंड हैं, वो जब अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं तो उससे एक प्रकार की जैव विविधता बनी रहती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, जो हमारा भूगर्भ जो जल का जो स्तर है उसको भी वो बना के रखते हैं, साथ ही साथ वो बाढ़ को भी रोकने का काम करते हैं जब बाढ़ आती है तो। और इसके अतिरिक्त हमारे वातावरण को इतना कहना चाहिए वो अच्छा बना के रखने का प्रयास करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो परिशुद्ध भी करते हैं
1: जी जी।
0: तो वेटलैंड जो है एक साथ अपनी कई भूमिकाओं में हमारे आसपास के जनजीवन को सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से हमें संजीवनी प्रदान करता है और साथ ही साथ हम लोगों को एक आजीविका भी उपलब्ध कराता है। तो वेटलैंड जो है उसकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। ये अलग बात है कि हम वेटलैंड के महत्व को जितना जल्दी हम समझ जाएं, उतना ज्यादा हम मानवीय दृष्टिकोण से और मानव समाज के लिए हितकारी होगा। इस बात को और मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि एक वेटलैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल वेटलैंड और एक होता है मैन मेड वेटलैंड, यानी मानव निर्मित वेटलैंड और एक प्राकृतिक रूप से वेटलैंड होते हैं। तो मानव निर्मित वेटलैंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित वेटलैंड जो हैं वो तालाब होते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं और बना करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे छत्तीसगढ़ में ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों की संस्कृति रही है। तालाब हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि हमारे नगरों में तालाब जो हैं अपने उस वैभव के साथ हैं। और उस वैभव का कहना चाहिए, जब हमारे पूर्वजों ने इन तालाबों का निर्माण किया था तो उसका जो है आज भी हमें लाभ मिल रहा है। आज देखिए, तालाब जहाँ जहाँ हैं वहाँ प्राकृतिक रूप से जो उसके जल स्रोत हैं वो बने हुए हैं। और उन तालाबों को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम यदि इतिहास में हम यदि जाएं तो एक इकाई होती थी तालाब बनाने वालों की और एक तालाब बनवाने वालों की
1: जी।
0: तो ये दो इकाइयां मिलकर के तालाब बनाती थी और बनवाती थी। कोई अपने माता पिता की स्मृति में भी बनाता था, कोई परोपकार के भाव से तालाब खुदवाता था, कहीं पे राजा जो हैं तालाब खुदवाते थे, कहीं पे रंक भी जो होते थे वो तालाब खुदवाते थे। और पुण्य का काम यदि कोई माना जाता था हमारे भारतीय संस्कृति में तो वो तालाब खुदवाना माना जाता था
1: जी जी।
0: उनको ये मालूम था कि ये जो वेटलैंड है ये न केवल हमको जीते जी हमको बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, अपितु

0: आने वाली पीढ़ी को भी ये संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे और उनका जो जीवन है इससे कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन भी होगा।
1: प्रभात मिश्रा जी, कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज, परिवार और प्रकृति, इन तीनों का जो समन्वय है, जिसकी आधारशिला हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रखी गई है हमारी संस्कृति में, और उस संस्कृति में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये पूरी वसुंधरा और पूरे सभी लोगों को सुख और शांति देने का जो भाव हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है, उसी भाव के अनुरूप हम अपने समाज को, अपने परिवार को और प्रकृति को जितना ज्यादा हो सके संरक्षित करें, संवर्धित करें, ताकि ये वसुंधरा जो है बहुत अपनी उस स्वाभाविकता में, उसी स्वरूप में रहे जिस स्वरूप में वो हमें प्राप्त हुई है, जिस स्वरूप में हम उसमें जीवन जी रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी वसुंधरा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही वसुंधरा है, एक ही वसुधा है, एक ही पृथ्वी है। उसे यदि हम जितना हो सके हम बचा के रखें, संरक्षित करके रखें, तो हमारा मानव जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। श्रोता साथियों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा, जब हम गर्मी की तपिश को हम एक तरह से झेल रहे हैं और वो हमें बहुत ही प्रभावित कर रही है, आप जहाँ जहाँ पे वेटलैंड देखते हैं वहाँ वहाँ आप उन चीज़ों को लेकर के हमारे वेटलैंड को संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें, क्योंकि यही वेटलैंड जो है हमको बचाएंगे, और क्योंकि यदि ये बचेंगे तब वो हमको बचाएंगे। तो वेटलैंड को आप जहाँ भी देखें उसको संरक्षित करें, और इसके लिए जो भी प्रयास हो, शासकीय स्तर पे हो चाहे वो नागरिक स्तर पे हो, आप अपनी तरफ से ऐसा प्रयास कीजिए कि वेटलैंड को कोई नष्ट ना करे, वेटलैंड को लोग एक ऐसा जो हमारे लिए वो जीवन दायिनी है ना, वो हमारे लिए जीवन प्रदाता है, वो हमको जीवन हमें देता है। तो आप जहाँ भी रहें वेटलैंड को बचाने के लिए सक्रिय रहें, अपने नज़दीक के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जाएं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और कोई ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ जा करके आप वेटलैंड को बचाने के सारे उपाय करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आज जहाँ भी मैंने वेटलैंड पे मैंने काम किया है, उसके लिए जो भी हमारे लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत वेटलैंड को बचाने का जो हमने प्रयास, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। शासन स्तर पे भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, शासन के साथ प्रशासन में भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप एक पहल करें, और उस पहल में आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि केवल हमारा उद्देश्य है वेटलैंड संरक्षित हो।
1: प्रभात जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे हम कार्यक्रम इनसे मिलिए। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देखकर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है। आप कहीं भी रहें और सुनते

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था

कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाज।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब।

0: लगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे।

0: 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है?
2: मैं आओ विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख
1: सिकंदर। क्या हुआ तुझे? कुछ मेरे यार चरण से झड़प हो गई।
4: नहीं बताती हूँ। दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं

0: बस बस करो मेम साहब।
1: मेम साहब
0: क्या काम ना है तेरी मेम साहब अच्छे से तू?
1: नहीं
2: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
0: कहता।
2: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
0: सिकंदर ये तुमने क्या किया?
3: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
2: तुम?
4: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
5: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
3: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
6: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने इन समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2000 से अधिक छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। समूह नृत्य, नाटक, प्रहसन और चित्रकला के माध्यम से रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता संदेश दिया जाएगा। वहीं शाम 4:30 बजे आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और पर के संदेश को भी बढ़ावा देगा। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट से बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जहां समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए, वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज 20 से अधिक स्थानों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, बिजली गिरने और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इधर गुरुवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। ये FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 10 बजे हैं, आपकी सेवा में अब प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। आज कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं दिलहरण यादव, शिवचंद यादव और साथियों के स्वर में बांस गीत, सुरूजबाई खांडे और साथियों के स्वर में ढोला मारू का किस्सा। आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस बांस गीत के साथ, जिसे गाया है दिलहरण यादव और साथियों ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी रायपुर से होंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के

कहा तीरी आके जाते लाना एकाई से वाला हुआ माधावन मा एला छोड़ी।

আঘাতে ভাই মো যে আমা জুদা তো টিয়া কায় নাই বড়া।

0: अपने घर।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में आइए अब सुनते हैं शिवचंद यादव और साथियों के स्वर में ये बांस गीत।

Down, down, down.

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सरोज बाई खांडे और साथियों के स्वर में ढोला मारू का किस्सा।

ढोला मारू का किस्सा अभी आप सुन रहे थे सुरुज बाई खांडी और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपके ढेर सारे पत्र साथ लिए हाजिर हैं हम कार्यक्रम आपकी पसंद में, और इन्हीं पत्रों में से चुनकर लाए हैं कार्यक्रम का हम पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म

लम्हे से लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, शिवहरि का संगीत है और इस गीत को पसंद कर रहे हैं हमारे आप सभी श्रोता। दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, पूड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार और माखीजा परिवार के सभी सदस्य बनियापारा धमतरी से इस गीत को पसंद कर रहे हैं। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनीश्वर रजक, फानीश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक और तानिया रजक, आपने भी इसी गीत को पसंद किया है। बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद आंचल, चंचल चांदनी, विनय कुमार वर्षा, मनोज कुमार कंवर और शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और कोरम परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हमें ये पत्र मिला है। नकुल शम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप हैं लुत्रा खमरिया के हमारे श्रोता। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन भी सुनना चाह रहे हैं फिल्म लम्हे का यही गीत।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में आपने सुना फिल्म लम्हे का गीत। ये था कार्यक्रम का पहला फरमाइशी नगमा। और अब अगली फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं इन श्रोताओं की। पहले बता देते हैं हम कौन सा गीत सुनवा रहे हैं आपको। सौतन फिल्म का गीत है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, सावन कुमार का लिखा गीत, प्रदीप कौशिक का संगीत। और पसंद करता है बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, दयालबंद बिलासपुर से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेषा आदित्य और रिताली राउत, बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम और लतेल साहू आप हैं भाटापारा से, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, रायपुर से हैं नीलू मेघ, भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टीकेश्वर, डोमन यादव, राम शीला यादव और जनाराम यादव आप हैं कातल बोर्ड से, करगी रोड कोटा से हमें पत्र भेजा है शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या और शालू ठाकुर ने, दुर्गेश साहू, अश्विनी कुमार आप हैं मेहता नगर भाटापारा के हमारे श्रोता, कंवर चौक भाटापारा से ही पत्र हमें आया है, सादिया खान, अशरफ खान, नासिर खान, रमजान खान, अयाज खान और अल्फेज खान का, शिव चौक साकरा भूमिया तिलदा से हैं मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी और सुशांत खुशांत निषाद, आप सबकी पसंद पर आ रहा है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त श्रोता आनंद उठा रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। रोजाना आपको हम बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था की जानकारी देते हैं, इसी क्रम में अब प्रस्तुत है आज के ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार दोस्तों, अब आप उमा शंकर पांडे से सुनेंगे यातायात संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यद्यपि जिले की तमाम सड़कों में लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं सभी सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की बाढ़ सी आ गई है, फिर भी पूरे शहर में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार हमेशा यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है हमेशा यातायात नियमों के अनुकूल चलें। मित्रों, स्थानीय पुलिस लाइन में चल रहे उर्स का आज दूसरा दिन है। शाम होते ही यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। आज ही यहाँ कव्वाली का भी आयोजन रखा गया है, अतः आज यहाँ कव्वाली का आनंद लेने बड़ा जन समुदाय एकत्र होगा पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार के आसपास, अर्थात सिविल लाइन तिराहा में तमाम प्रकार के वाहनों की बड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ लोग प्रायः गलत दिशा से वाहनों के साथ मैदान में प्रवेश करते हैं, जो अनुचित है, जिससे हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः सभी संभल कर चलें, सही दिशा में चलें, नियमों के अनुसार ही चलें। कव्वाली सुनने आने वाले लोगों से अनुरोध है अपने

0: चौपहिया या चार पहिया वाहन मैदान के बाहर सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़ा न करें। पार्किंग व्यवस्था का लाभ उठाएं ताकि सड़क में यातायात की समस्या न आवे। दोस्तों, सड़कों में वाहनों की तेज गति जान की दुश्मन सिद्ध हो रही है और इसमें दुख की बात यह है कि इसके शिकार युवा ही हो रहे हैं। ये सच है कि युवाओं में अपार शक्ति, जोश, उमंग, उत्साह होता है, किंतु यह भी सच है कि कहीं कहीं अति उत्साह घातक भी हुआ करता है। वाहनों का ओवर स्पीड जानलेवा साबित हो रहा है। एक दिन पूर्व ही तेज रफ्तार के कारण दो पहिया वाहन के अनियंत्रित होने से गिरकर तीन तीन लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना से सभी युवाओं को सोचना होगा कि उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। सचेत हो जाइए, आपका वाहन सीमित गति में ही चलाएं और सुरक्षित वापस घर भी आए। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: जावेद अख्तर का लिखा, शंकर एहसान लॉय द्वारा संगीतबद्ध, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया गीत दिल चाहता है फिल्म से आइए सुनते हैं आप श्रोताओं की पसंद पर। हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल। जांजगीर महेंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता, खुशबू कुमारी कश्यप, अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी लक्ष्मी, प्रेरणा और डिम्पी यादव, सुभाष वार्ड भाटापारा से, हथबंध नेवधा से दुलारी यादव, प्रियंका यादव, प्रीति उमेश्वरी और सुनती यादव। भक्तीन बाजार मेहमतपुर अकलतरा से हमें पत्र भेजा है रमेश कैवर्त, राजकुमारी कैवर्त और आरती कैवर्त ने इसी गीत के पसंद करता है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। राम कुमारी रामदुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति आप हैं बुड़गहन से हमारे श्रोता। दत्रिंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। आप सबकी पसंद पर आ रहा है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अंतिम गीत नीलेश मिश्रा का लिखा ये गीत है, प्रीतम की तर्ज पर गाया है अभिजीत ने, फिल्म है गैंगस्टर। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं भाटा हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू मुकेश हरीश किरण और दुलारी वर्मा, प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले आप हैं, गौतम नगर नांदेड़ के हमारे श्रोता, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल, दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत नीरज शुभम और सौरभ रावत आप हैं भाटापारा के हमारे श्रोता, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें पत्र भेजा है हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सबकी पसंद पर आ रहा है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी नगमा।

अभिजीत के गाए फिल्म गैंगस्टर के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राज

0: कुमार डूडी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
1: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
1: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग है। सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध

0: सिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हों, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत

0: में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में

0: में लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
4: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
4: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
4: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
4: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं,

0: आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 11:30 हो रहे हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

0: इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा

0: पंकज उधास की आवाज़ आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त 11:55 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी

0: अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर हुई है। जिले के 3 धान खरीदी केंद्रों कीरित, कड़ारी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद 3 थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। ये सभी 7 आरोपी फरार बताए जाते हैं। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हो रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात 2 वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 1,25,00,000 रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 12 बज चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदास कोलकाता।
2: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को

0: होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन टीएआरए हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएआरए हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
3: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: बाजू।

0: क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं।

कभी छोटे कभी खड़े कभी खोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: घर है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन

से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोरी होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहां पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है, तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया, और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे। जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम, आज 38 बरस हो गए विवाह को किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीजें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा, साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा, मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मजेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक केप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, वज्र सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी ही सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मजा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है। ये बदलाव काफी अच्छा और सफल भी हो रहा है।

और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे, ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दूल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं। आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए, मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए, ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न 4 बड़ी-बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जयघोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में यह युद्धघोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।

0: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी, किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
1: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगालवासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है। इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
0: सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ।

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय

आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसाल प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को ₹5 का जुर्माना भरना पड़ा।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर, और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो

अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े. डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्रिकर

0: संगम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदु थलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट

0: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार

0: पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजे शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर, और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा,
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या

0: कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो
1: मैं
0: ये
1: वहीं से कर।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो
1: जी।
0: ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन?
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा सबके नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के?
1: हाँ,
0: तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत
1: और
0: सारे जी।
1: हाँ, और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: पालदाना का इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही है।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का कैसा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना है।
0: हाँ बताइए, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सिंधरिया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी,
1: जानकारियां भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ।
0: हम्म,
1: और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ
1: हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 45 साल होगी।
0: जी,
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में।
0: जी
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: हम्म, तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई
0: झनकार,
1: से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात
1: जी
0: है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं
1: बस
0: झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी,
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात
1: तो
0: है!
1: अच्छा।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी
0: जी
1: भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है!
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: अट्ठाईस से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं
0: सिखाने?
1: नहीं शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने,
1: भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की,
0: क्या
1: कि
0: बात
1: वो
0: है!
1: जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं। वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी?
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई, तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी! तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में इस
1: अच्छा था और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, ये तो खुद चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं?
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: हाँ है
0: हैं।
1: ना, है भैंस भैंस है,
0: क्या है वहाँ पर पशुधन
1: भैंस
0: में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है,

0: वन टाइम टाइम से खिलाते हैं।
1: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
0: फिर
1: होता
0: वहाँ
1: होगा।
0: पे घर रहे इसमें घर में अंदर बांध कर खिला देते हैं।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
0: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा
1: जी,
0: जी
1: मध्य प्रदेश।
0: जी, क्या
1: जी
0: कर रही
1: मैम,
0: थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है
1: सच्ची
0: ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो
0: जी।
1: वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार, तो लग ही जाएगा तेरा। बोल
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी, मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला वारा राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी, आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी।
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी, मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना,
0: जी
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी, फिल्म का नाम है गाइड, पिया तो से नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तो से नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत,

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का यह फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए, और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सूनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला।

जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजाकर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में से सख्त सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था। नीरो निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से

किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती।

करती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंगरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये बंसीपुर, ढोढ़ा गांव, घासीडीह, बोड़ा झरिया, दाती ढाप, कंडराजा, चोर की पानी, डांड केसरा, परपटिया, लोटा ढोढ़ी, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंग डांड, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 94 है। ये आमगांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुमकेला, डूंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारुमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाल, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरी पानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना

0: आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला तराना हम आपकी नजर करते हैं साधना सरगम और कुमार शानू की आवाजों में दीवाना फिल्म से। समीर के लिखे बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए।

चितपट संगीत के पहले तराने को अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं कुमार शानू और साधना सरगम की। फिल्म का नाम था दीवाना। कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस बार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म का ये गीत। रानी मलिक की है रचना और संगीत से सवारा है इस गीत को नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको देते चलें। कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में फोन इन पर आधारित कार्यक्रम माह के दूसरे मंगलवार को प्रसारित किया जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से 4:30 के बीच इस माह की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा आंखों की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर ज्योति आचार्य, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आप इनसे अपनी आंखों की संबंधित समस्याओं पर विस्तृत जानकारी पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर कॉल लगाकर बात कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर हैं मित्रों 2665923100026। इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। याद रखिए 11 मई शाम 4 बजे से 4:30 के बीच हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य संबंधी क्रम पर आधारित विषय का, जिनका इस बार का टॉपिक है आँखों की देखभाल कैसे करें। विशेषज्ञ होंगी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति आचार्य। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कॉल लगाएं, आपके कॉल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज़ में बेटा फिल्म से। समीर की रचना है, आनंद मलिक का है, माफ़ कीजिएगा, आनंद मिलिंद का है संगीत। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है अमीन साबरी की आवाज़ में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। समीर की रचना है और संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे हैं सिर्फ तुम। इस फिल्म से अमीन साबरी और साथियों की आवाज़ें थी और इस अंतिम गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत की।

युवा जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मातृका का जय जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस अंक में। दोस्तों, आज जब मैं आकाशवाणी केंद्र आ रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि ये ख्याल क्यों ना आप सभी से साझा करूं। एक दौर था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 11 नंबर की बस यानी कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे समय बदला और आने जाने के लिए साधनों में बदलाव भी आया, बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी और अब अलग अलग तरह के दो पहिया ने ऐसी जगह बना ली है कि हम पलक झपकते ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या इस रफ्तार के बीच हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं? अक्सर सड़क पर चलते समय हम कुछ बातों को यूं भूल जाते हैं जो हमारे और हमारे साथ साथ वो लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उन्हें सुरक्षित रख सकती हैं। साथियों, हम हर रोज आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से दिन में दो बार उमाशंकर पांडे जी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। इस कार्यक्रम में सड़क पर चलने और वाहन चलाने से जुड़ी ढेर सारी सावधानियां बताई जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम उन बातों को सुनकर असल जिंदगी में कितना अमल में लाते हैं। ये ना सिर्फ हमारी समझदारी है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आज पूरे भारत समेत पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बहुत चिंताजनक माने जा रहे हैं। इन हादसों ने ना सिर्फ जनहानि को दिलाया है यानी कि इन हादसों से ना सिर्फ जनहानि होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी पर भी इनका नकारात्मक असर पड़ता है। इन आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन नियमों तोड़ने पर जुर्माने और दंड का प्रावधान भी है। सुरक्षा के कुछ सरल नियम जो हम सब जानते हैं, जैसे कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा मानक ISI मार्क हेलमेट पहनना चाहिए, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़क पर निर्धारित गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारे नियम सिर्फ कागजों के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हमें खुद ये ध्यान रखना होगा कि हम और हमारे आसपास के सभी लोग सुरक्षित रहें सड़क में चलते वक्त, ताकि जिस खुशी और लक्ष्य के साथ वो घर से निकले हैं उसी तरीके से वो सुरक्षित वापस भी लौटे। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुर्घटनाओं के ये आंकड़े बढ़ते नहीं बल्कि घटते क्रम में नजर आएंगे। फिलहाल आप इस रेडियो सेट के माध्यम से, आकाशवाणी बिलासपुर के माध्यम से सुनिए ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है धड़कन आवाज, मस्तानी सी है किशोर कुमार के। गीत लिखा था प्रेम धवन और रवि ने, संगीत था रवि का।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से निशान हम देखते हैं। जब स्कूल जाया करते थे तो वहाँ भी बहुत सारे निशानों के बारे में पढ़ते थे। ये सिर्फ निशान नहीं बल्कि संकेत हुआ करते थे। हम सब ने बचपन से अस्पतालों, एम्बुलेंस या दवाइयों की दुकान पर एक लाल प्लस के निशान देखे होंगे। वही निशान है रेड क्रॉस का निशान। ये रेड क्रॉस इस दुनिया का सुपर हीरो है। आसान शब्दों में कहें तो रेड क्रॉस दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। इसकी शुरुआत लगभग 160 साल पहले हेनरी ड्यूनेंट नाम के एक व्यक्ति ने की थी। उनका मकसद बहुत साफ था, युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की मदद करना, चाहे वो किसी भी देश के क्यों न हो। आज ये संस्था पूरी दुनिया में फैल चुकी है और बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो अमीर हो या गरीब या किसी भी धर्म का हो, मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा करती है। वैसे अभी जैसे वैश्विक स्तर की स्थिति है, कई लोगों में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अभी के समय में रेड क्रॉस की तो बहुत जरूरत है। हमें लगता है कि रेड क्रॉस सिर्फ युद्ध या बड़े भूकंप के समय काम आता है, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हमारे किसी करीबी को अचानक खून की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले रेड क्रॉस के ब्लड बैंक की सेवा ही याद

जाती है। आपका दिया हुआ एक यूनिट खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। सड़क पर चलते हुए खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वहां दी जाने वाली फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अक्सर रेड क्रॉस ही देता है। भारी बारिश हो, बाढ़ आए या कोई महामारी, जैसे कुछ सालों पहले हमने कोरोना का सामना किया था, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स खाने पीने से लेकर दवाइयों तक की मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, रेड क्रॉस कोई सरकारी विभाग नहीं, बल्कि ये इंसानियत का जज्बा है। हम अपने स्तर पर इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत आसान है। रक्तदान करके, फर्स्ट एड सीख कर या बस किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करके। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। एक संदेश के बाद हम लौटते हैं और कुछ नई बातें, कुछ और बातें आप तक पहुंचाते हैं।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: साथियों, अब बारी है आज के क्रम की। आज का क्रम है कौशल विकास और उद्यमिता। इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कौशल विकास। इस विषय पर आईटीआई कोनी के सीनियर ट्रेनर श्री दिलीप तिवारी, ऑटोमोबाइल ट्रेनर श्री गोपाल साहू और ट्रेनी मदन मोहन से बातचीत।
2: कौशल, स्किल और हुनर, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्याय हैं और अगर कोई व्यक्ति इनका धनी हो तो आज के समय में वो पूरी दुनिया जीत सकता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग जो इनमें महारत हासिल की है। आज का हमारा क्रम है कौशल विकास और उद्यमिता। तो किस तरीके से कौशल विकास हम कर सकते हैं और किस तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते, इस बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनी है। आज इस क्रम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल इस ट्रेड से जुड़ी हुई जानकारियां और ये जानेंगे आज की इस बातचीत में कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आज युवा जगत के इस कार्यक्रम में, इस क्रम में हमारे साथ हैं दिलीप कुमार तिवारी जी, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर यानी कि आईटीआई बिलासपुर में प्रशिक्षण अधीक्षक के पद पर हैं और हमें इस विषय में जानकारी देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे हमने अपने श्रोताओं को बताया कि हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इस ट्रेड के बारे में, तो किस तरीके से ये ट्रेड काम करता है और किस तरीके से इस ट्रेड में हम कौशल विकास की ओर आगे आ सकते हैं।
3: ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5 ट्रेड संचालित है। एक मोटर मैकेनिक है, मोटर व्हीकल है, डीजल मैकेनिक है और ट्रैक्टर मैकेनिक है। ये सभी ट्रेडें ऑटोमोबाइल के ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। मोटर मैकेनिक में ऐसा है, आज के जमाने में हर किसी के पास मोटर कार है। मोटर कार के द्वारा अब किसी की गाड़ी खराब हो गई तो उसको उस बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को ऐसा ट्रेन करते हैं हम, एक तो ड्राइविंग भी सीखे, दूसरा रिपेयरिंग का भी उसमें मतलब सम्मिलित रहता है।
2: जी,
3: डीजल मैकेनिक ट्रेड में डीजल पंप जो है और उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। डीजल मैकेनिक में जैसे आपका मोटर से संबंधित भी है उसमें, और जो पंप चलाते हैं डीजल जनरेटर है ना, इस ट्रेड से संबंधित जो बच्चे हैं इनके जो प्लेसमेंट है ये रेलवे में लोको पायलट के लिए भी होता है। और ये जो ट्रेड वाले हैं इनमें बहुत ज्यादा प्लेसमेंट है और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों और अपना लाभ उठाएं।
2: जी,
3: मोटर मैकेनिक जो है, मोटर मैकेनिक में सभी प्रकार की मोटर कारों बनाने के बारे में बताते हैं और बच्चे जो है वो बहुत सी बारीकी से उनका अध्ययन करते हैं। मोटर मैकेनिक में जैसे लाइट मोटर व्हीकल है उनका ज्यादा ट्रेनिंग, हमारे यहाँ ट्रक भी है, तो लाइट मोटर व्हीकल में ब्रेक है, वो जितने सभी प्रकार के पूरा

0: उसको खोल करके बच्चे पूरा एक से ट्रेनिंग। हमारे यहाँ प्रशिक्षक भी बड़े अच्छे हैं, ट्रेन प्रशिक्षक हैं,
1: जी
0: तो ट्रेन प्रशिक्षक यहाँ से निकलते हैं बच्चे,
1: हम्म,
0: उसके बाद या तो स्वयं रोजगार कर सकते हैं या प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ बड़े काफी मतलब खुला हुआ है।
1: जी
0: बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी कंपनियां आती है, मतलब बच्चे हमको नहीं मिलते हैं। तो ये सबसे दी बेस्ट ट्रेड है मोटर मैकेनिक, और बच्चे इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज कोई बच्चे हमारे मोटर मैकेनिक के बेरोजगार नहीं है, 100% प्लेसमेंट।
1: जी तो मोटर मैकेनिक में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लाइट मोटर व्हीकल। तो कौन कौन सी गाड़ियां हम अपने आसपास देखते हैं जो लाइट मोटर व्हीकल में आती हैं?
0: जो कारें चलती है लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आती है,
1: जी
0: 2000 सीसी, 1500 सीसी, तो ये सब गाड़ियां आती है लाइट मोटर व्हीकल में। उसी
1: जी
0: तरीके से हमारे यहाँ एक ट्रेड और भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल।
1: जी
0: इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रेड अभी नया चालू हुआ है, तो
1: हम्म,
0: इस ट्रेड में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और मशीन उपकरण की खरीदी हो, तो उस पे और अच्छे ट्रेनिंग दे सके, तो उसके लिए शासन प्रयासरत है। मोटर व्हीकल नया ट्रेड है, ये बहुत बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि आने वाला जमाना जो है इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल का होगा, चार्जिंग वाली बैटरी से ही होगा, तो
1: जी
0: इसीलिए क्या पेट्रोल की बचत होगी, इसलिए
1: हम्म,
0: फ्यूचर उसी का ज्यादा लग रहा है।
1: जी
0: जी, एक और ट्रेड है ये ड्राइवर कम मैकेनिक।
1: जी
0: ये ट्रेड जो है 6 महीने का है, 6 महीने में बच्चा जो है ड्राइविंग का सीखता है, और कुछ जो भी गाड़ियां खराब होती है उसके बारे में आंशिक रूप से उसको बताया जाता है।
1: जी
0: तो ये बच्चे जो है जैसे ड्राइविंग प्रैक्टिस करके निकलते हैं, इनको सर्टिफिकेट डीजीटी द्वारा मिलता है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, या तो सर्विस भी कर सकते हैं, या पर कहीं पर जाकर के ड्राइविंग का स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा ट्रेड है, 6 महीने का मात्र ट्रेड है। इसी प्रकार ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड है। ट्रैक्टर
1: जी
0: मैकेनिक में एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित जितने जो होता है वो सभी यंत्रों का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, रिपेयरिंग का भी देते हैं, तो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, और उसके कृषि यंत्र का जो जितने उनसे संबंधित यंत्र है
1: जी
0: उसका भी ट्रेनिंग लेते हैं।
1: यानी कि अगर हम थ्रेशर की बात करें, हार्वेस्टर की बात करें, या और भी जो दूसरे यंत्र हैं, उन सारे यंत्रों का की ट्रेनिंग जो है वो इस ट्रेड के माध्यम से मिलती है। जी, तो अगर हम बात करें कि इस ऑटोमोबाइल ट्रेड में लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर किस तरीके के रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं?
0: जैसे मैंने बताया इसमें स्वरोजगार का भी काफी चांस होता है,
1: जी
0: स्वरोजगार, और दूसरा प्लेसमेंट भी होता है। तो या तो बच्चा स्वयं रोजगार कर सकता है, ऑटोमोबाइल ट्रेड करने के बाद स्वयं का भी दुकान स्थापित कर सकता है। आज जो है मोटर व्हीकल का ही जमाना है, हर किसी के पास कारें हैं, बाइक्स हैं, और छोटा मोटा अपना गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी दिया जाता है, उसमें सब्सिडी भी दिया जाता है। और भी जैसे ड्राइवर कम मैकेनिक है,
1: जी
0: उसमें तो ड्राइविंग का ही है, अपना स्वयं का गाड़ी खरीद सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उसके बाद अपना जितना कमाई अनलिमिटेड कर सकते हैं, उसमें जितना
1: जी
0: मेहनत करेंगे उतना कमाई कर सकते हैं। अब ऐसे ट्रैक्टर मैकेनिक का भी है, ट्रैक्टर मैकेनिक का अपना ट्रैक्टर लोन से लिए अपना चलाए, जो भी है, ये बहुत सारी ट्रेड है। आज के डेट में ऑटोमोबाइल जो है फ्यूचर के लिए भी, पूरे भारतवर्ष के लिए, बच्चों के लिए, आईटी जो भी ट्रेड है उसमें सबसे बहुत बढ़िया ट्रेड है। योजनाएं सरकार के, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता, हम उनको गाइड करते हैं, भाई आप वहां जाइए और
1: जी
0: इसका लाभ उठाइए।
1: जी इस मोड़ पे हम आपसे, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए संदेश चाहेंगे।
0: मेरा तो युवा साथियों से यही अपील है कि नौकरी की तरफ ना भागें और स्वयं का रोजगार करें, रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले।
1: जी
0: क्योंकि हमारे यहाँ से भी और भी बहुत सारे बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं
1: हम्म,
0: आज स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, 50 50 60 बच्चों को रोजगार दे के रखे हैं। तो आप ऐसा बनिए, किसी और का भला करिए, और बच्चों को ऐसा प्रेरित करिए कि भाई आप रोजगार में, क्योंकि हर किसी को नौकरी मिलेगा नहीं, इसलिए कहा स्वयं का भी रोजगार खोले, आप फायदा उठाइए, ऑटोमोबाइल करिए और स्वयं का भी रोजगार करिए, प्लेसमेंट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें और ज्यादा अपने फ्यूचर बना सकते।
1: इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोनी बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ ऑटोमोबाइल इस ट्रेड में किस तरीके से कौशल विकास किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को तैयार किया जा रहा है, उद्यमिता की ओर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस विषय पर हम जान रहे हैं। और हमारे साथ हैं ऑटोमोबाइल इस ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर गोपाल साहू जी। तो बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और आप ये बताएं कि जिस तरीके से

0: ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो किन किन प्रकार से लोगों को डेवलप किया जा रहा है, उनके स्किल को डेवलप किया जा रहा है?
1: जैसे कि मैडम हम तो यही का ट्रेनिंग हूँ 93-95 का
0: जी।
1: जैसे हमारे समय में क्या है, पुराने मॉडल गाड़ियां होती थी, पुराना मॉडल जैसे समय का जो क्लच का सिस्टम है या पावर स्टीयरिंग का सिस्टम है वो ना मैनुअल हुआ करता था। आजकल गाड़ी हम जनरली आप देखे हैं कि पावर स्टीयरिंग गाड़ी आ गई है और आपका जिसके मास्टर सिलेंडर है। हमारे समय में पढ़े उस समय मैडम मास्टर सिलेंडर हुआ करता था, मास्टर सिलेंडर में हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि अगर कभी आगे पहिया का अगर ब्रेक फेल हो गया है आपका तो आपकी गाड़ी रुकती नहीं थी
0: जी,
1: एक्सीडेंट हो जाती थी। लेकिन आजकल की गाड़ियों में क्या है, जनरली टेंडम मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है। अब उसमें होता क्या है, अगर आपकी आगे के या पीछे के पहिए लीकेज हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो आप गाड़ी को धीरे से आप गाड़ी को रोक सकते हैं, क्योंकि वो आजकल टेंडम मास्टर सिलेंडर दिया हुआ, अलग अलग ब्रेक में अलग अलग ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है
0: जी।
1: तो इसमें ब्रेक में एक परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज आजकल

0: आजकल की गाड़ी हम जनरली आप देखें कि पावर स्टीयरिंग गाड़ी आ गई है और आपका जिसके मास्टर सिलेंडर है, हमारे समय में पढ़े उस समय मेरा मास्टर सिलेंडर हुआ करता था, मास्टर सिलेंडर में हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि अगर कभी आगे पे ही अगर ब्रेक फेल हो गया है आपका तो आपकी गाड़ी रुकती नहीं थी, एक्सीडेंट हो जाती थी। लेकिन आजकल की गाड़ियों में क्या है, जनरली टेंडम मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है। अब उसमें होता क्या है, अगर आपकी आगे के या पीछे के पहिए लीकेज हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो आप गाड़ी को धीरे से आप गाड़ी को रोक सकते हैं, क्योंकि वो आजकल टेंडम मास्टर सिलेंडर दिया हुआ, अलग अलग ब्रेक में अलग अलग ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है
1: जी।
0: तो इसमें ब्रेक में एक परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज, आजकल की गाड़ियों में जनरली आप देखे हैं कि पुराने समय में पावर स्टीयरिंग नहीं हुआ करता, नॉर्मल हुआ था, आजकल पावर स्टीयरिंग की गाड़ियां आ गई है। दूसरी, अभी पॉल्यूशन को देखते हुए शासन ने क्या किया है कि जनरली अभी ईवी गाड़ी निकाल दी, ऑटो इलेक्ट्रिकल निकाल दी है, उसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और दोनों सिस्टम कर दिए हैं। आपका हैबिट इंजन भी डाले हैं, तो हैबिट इंजन में क्या है, जनरली आप उसमें 40 की स्पीड में चलाएंगे जब तक, तब तक कि आपकी ऑटो इलेक्ट्रिकल रहता है। 40 से ज्यादा अगर स्पीड में आप चलाते हैं तो आपको 40 ईंधन लगेगा
1: जी।
0: इस तरह से ईंधन बचाने के लिए सरकार का भी एक प्रावधान है। और स्किल डेवलप में क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे लोगों को अभी ट्रेनिंग के लिए अपना गुड़गांव भेजते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे सीख के आ रहे हैं और अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। और आपके जितने बिलासपुर में जितनी भी एजेंसियां हैं उसमें बच्चे लोगों को लोग रखते हैं और अच्छे से सीख रहे हैं
1: जी। अगर कोई युवा ऑटोमोबाइल के इस फील्ड में स्किल्ड होना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें सीखनी बहुत जरूरी है?
0: वर्कशॉप में क्या है, बहुत सारा टूल्स इक्विपमेंट रहता है, तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट है
1: जी।
0: सेफ्टी प्रिकॉशन का फॉलो अगर नहीं करता है, बच्चा काम कर रहा है, दुर्घटना घटने की चांस बनी रहती है। तो कभी भी आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर तो सेफ्टी प्रिकॉशन अनिवार्य है
1: जी।
0: दूसरी चीज क्या है, जैसे आजकल आप कहीं भी काम कर रहे हैं, बच्चे मिल जाते हैं, वर्कर मिल जाते हैं, लेकिन वर्कर को एक निश्चित वेतन मान मिलता है तब टिक पाते हैं वर्कर, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है कि वर्कर आप ऐसे मैनेज करके रखो कि आपके पास वर्कर भी रहे, तब तो आप प्राइवेट आप खोल रहे हो तो आप चल सकता है
1: जी। इस बीच हमने बात की एक ऐसे ट्रेनी से जिन्होंने ऑटोमोबाइल ट्रेड की ट्रेनिंग ली और अभी के समय में एक अच्छी जगह में काम कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनका नाम है मदन मोहन।
2: मैं ऑटोमोबाइल में फील्ड होकर अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो ऑटोमोबाइल पसंद था, इस कारण मैं ऑटोमोबाइल चूज किया था
1: जी।
2: उसके बाद मोटर मैकेनिक में मैं 2 साल आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस किया तो वहाँ भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला सर लोगों के द्वारा। और उसके बाद अप्रेंटिस के दौरान वहाँ डीलरशिप में मुझे रख लिया और मुझे अच्छा लग रहा है मैम, सैलरी वगैरह भी प्रॉपर ठीक है। मैंने तो इंजन का काम अच्छे से वहाँ जान लिया था मैम, सर लोगों एक इंजन खुला था उसी समय सर लोग द्वारा कुछ कुछ जानकारी में पार्ट का तो पूरा जानकारी हो गया था मैम
1: जी।
2: और यहाँ अप्रेंटिस में मैंने सीख लिया, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस किया तो
1: जी,
2: तो मैं वहाँ हेड मैकेनिक था। उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ यहाँ, मैं अभी टेक्निकल एडवाइजर भी हूँ मैम, गोल्ड मास्टर भी हूँ।
1: वाह जी, तो आपकी आवाज हमारे बहुत सारे युवा दोस्तों तक पहुंचने वाली है। और हम इस बातचीत में हमने ऑटोमोबाइल इस ट्रेड के बारे में साथियों को जानकारी दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इन श्रोता साथियों से?
2: ऑटोमोबाइल लाइन एक अच्छा लाइन है मैम, उससे कहीं भी रोजगार अपना मिल सकता है। हाँ, उससे अच्छा अपने घर में भी काम कर सकते हैं और अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम करके अच्छे से मैं कहीं कहीं बाहर भी काम कर लेता हूँ।
1: तो इसका मतलब ये है कि स्किल्ड होने की देर है, फिर काम या रोजगार या तो कहीं भी मिल जाएगा या खुद भी रोजगार पैदा कर सकते हैं।
2: कर सकते हैं मैम स्किल्ड होने के बाद भी
1: जी। तो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम अपने आसपास बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, 2 चक्के वाली, 3 चक्के वाली, 4 चक्के वाली और 4 से भी ज्यादा चक्कों वाली गाड़ियां देखते हैं जो सड़क में बड़ी रफ्तार से पीपो करती हुई गुजरती है। लेकिन इन गाड़ियों को देखे कभी ऐसा ख्याल नहीं आता है ना कि ये गाड़ियां कहीं रोजगार का जरिया भी बन सकती हैं। इस ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रोजगार बनाने का बहुत अच्छा अवसर है, बस जरूरत है तो उन मौकों को तलाशने की जो आपको इन 2 चक्किया 3 चक्के, 4 चक्के और ढेर सारे चक्कों वाले वाहनों के माध्यम

0: बेहतर कल और एक अच्छे रोजगार के विकल्प की ओर ले जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे क्रम कौशल विकास और उद्यमिता। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कौशल विकास इस विषय पर आईटीआई कोनी के सीनियर ट्रेनर श्री दिलीप तिवारी, ऑटोमोबाइल ट्रेनर श्री गोपाल साहू और ट्रेनी मदन मोहन से बातचीत आपने सुनी। आइए सुनते हैं अब एक संदेश।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के ये 90 साल आपने और आकाशवाणी यानी हमने इन 90 सालों में बहुत सारी चीजें देखी हैं और बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं, और आपके प्यार से यूं ही ये सफर चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 9 दशक हुए हैं, 10 दशकों और कई दशकों तक ये साथ यूं ही बना रहेगा। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि मौसम कैसी अंगड़ाइयां ले रहा है। कभी आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी ऐसे समय में बीमारी बहुत आसानी से आपका हाथ थाम सकती है। वैसे अगर बात बीमारियों की चली है तो एक ऐसी बीमारी के बारे में आप सभी को बताना चाहेंगे जो संक्रामक तो नहीं, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। साथियों, थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक बीमारी है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। हीमोग्लोबिन खून का वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जब ये कम होता है तो व्यक्ति को गंभीर एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, और अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो उसमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना यानी कि पीलिया जैसा दिखना, बच्चे का विकास रुक जाना या धीमा होना, हड्डियों में कमजोरी या चेहरे की हड्डियों का असामान्य दिखना, गहरे रंग का पेशाब आना। थैलेसीमिया के मरीजों को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से खून चढ़वाना पड़ता है। कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका इलाज संभव है, लेकिन ये इलाज काफी जटिल होता है। तो साथियों, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि बीमारी कितनी भी छोटी या बड़ी हो, अगर हम सब जागरूक रहें, सतर्क रहें, तो किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। और जाते जाते खून की कमी जीवन पर भारी, थैलेसीमिया मुक्त हो दुनिया हमारी। इस बात के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, स्वीकारें हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा जगत। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज संध्या 6:20 और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8 बजे का समय होगा सुगम संगीत का, जिसमें आज के कलाकार होंगे हंसराज हंस। और रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके अलावा संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट वर्मी वॉश लाभकारी होते। आगे 7:30 पर आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम। ये तो थी आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको कल सुबह और शाम के आकर्षणों के विषय में बतला दें। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और 9 बजे का समय होगा बातों बातों में कार्यक्रम का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे अमराई। अमराई में कल के कलाकार होंगे किस्मत बाई दवार और बसंती देवार, और साथ ही होंगे ललिता शर्मा और इनके साथियों की जोड़ी। नए तराने का समय होगा 10:30 पर, और इसके साथ ही शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। श्रोताओं, कल शाम 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का, और 5:35 6:20 और 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने ये कार्यक्रम हमारे ही केंद्र से। 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल नुसरत फतेह अली खां के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत, और रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। और कल शाम 7:20 पर आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, जिसमें जानकारी देंगे प्रयोगशाला जांजगीर के मिट्टी परीक्षण कृषि परीक्षण विकास अधिकारी श्री विजय सिंह बौद्ध। और इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के होइस बिहाव। देश भर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के

0: आयोजन ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा और प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सबो जिला में सामूहिक विवाह के आयोजन करेगी। ये प्रदेश व्यापी आयोजन में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन उनकर अपन अपन धर्म रीति रिवाज ले विवाह होइस। एमा हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष पिछड़ा जनजाति के जोड़ा घलो शामिल रहीन। वे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शक्ति जिला में 70 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 72 जोड़ा के विवाह कराएगी। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कार्यक्रम में विशेष रूप ले 4 बैगा आदिवासी परिवार के 2 जोड़ा आकर्षण के केंद्र रहीन। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा बतैन कि विभाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ला बढ़ावा दे के संग जिला ला बाल विवाह मुक्त बनाए के दिशा में सरलक कार्य करत है। आकाशवाणी है राष्ट्र के प्रति अपन विशेष सेवा के 90 बच्चर पूरे के मौका में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन के आयोजन करीस। करीबन 3.5 किलोमीटर मैराथन के शुरुआत आकाशवाणी भवन ले होइस। ये मैराथन कृषि भवन रेल भवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले गुजरत आकाशवाणी भवन में सिराइस। मैराथन पूरा करैया सबो प्रतिभागी मल्ला पदक प्रदान करेगीस। उन्हें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ऊपर के 3 प्रतिभागी मल्ला ट्रॉफी प्रदान करेगीस। बता दें कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है ये मैराथन ला रवाना करी। ये मौका में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है बताई कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के देश के सेवा में करे गए योगदान ला दर्शाते। देश भर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन होही। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के आपसी सहमति ले निपटारा करे जाही। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में घलो विशेष लोक अदालत में लंबित मामला मन के सुनवाई होही। पक्षकार मल्ला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 21 मई तक गूगल फॉर्म में देना होही। ज्यादा जानकारी बर बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ले संपर्क करे जा सकत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हा अपन अधिकारी कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता में केंद्र सरकार जैसा 2% बढ़ोतरी के ऐलान करे है। मुख्य अभियंता के आदेश ले अब कर्मचारी मल्ला 60% डीए दे जाही। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। उन्हें मई के वेतन ले कर्मचारी मल्ला नवा दर ले भुगतान करे जाही। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी में बड़े गड़बड़ी उजागर हुए है। जिला के 3 धान खरीदी केंद्र किरीत कड़ारी और बिर्रा में करीबन 4700 क्विंटल धान गबन करेगी जेखर कीमत 1,29,00,000 रुपए बताए जावत है। मामला अगुवाए के बाद नवागढ़ बिर्रा और बाराद्वार थाना में 7 कर्मचारी मन के खिलाफ केस दर्ज करे गए है। एमा संस्था प्रबंधक खरीदी प्रभारी ऑपरेटर और हमाल घलो शामिल है। ये सबो आरोपी मन मामला अगुवाए के बाद फरार बताए जावत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतैया 30 शिक्षक मन के खिलाफ बड़े कार्यवाही करे है। मंडल के आदेश में एखर ले जुड़े शिक्षक मन ला अवैया 3 बर आने आने कारज ले ब्लैकलिस्ट कर देगी से। जानकारी ले उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बेरा कतकोन छात्र मन के अंक ला 20 ले 40 तक बढ़ाए गए रही से जिला गंभीर लापरवाही मानत मंडल है जांच के बाद शिक्षक मन ऊपर कार्यवाही करीस। मंडल है लापरवाह शिक्षक मन के एक वेतन वृद्धि संचय प्रभावी ले रोके की घलो अनुशंसा करे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बार थन बांचे समाचार गोती।

0: कोरबा जिला के बांगो थाना इलाका में चोटिया गांव के तीर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में सड़क हादसा हो गए, जेमा एसईसीएल गेवरा के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी के निधन हो गई। जानकारी ले अरुण कुमार त्यागी के हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के पद में पदोन्नति हो रही से उमन इही नवा जिम्मेदारी ल संभाले बर कार ले सिंगरौली जावत रहीन है। इही बेरा चोटिया गांव के तीर उखर कार है एक ठन आने गाड़ी ले टकरा गिस। वे जांजगीर चांपा जिला के बलौदा इलाका में घलो हरदी बाजार रद्दा में कोयला भरे ट्रक पलट गए, एक चपेट में आयले फटफटी सवार दू जन के मौका में ही मौत हो गए। इस घटना के बाद ट्रक चलैया मौका ले फरार बताए जावत है। ओती शक्ति जिला के नंदनी गांव में बस स्टैंड के तीर दू ठन गाड़ी टकरा गई। हादसा में कार सवार एक मनखे के मौत हो गई। ये हादसा में आमाकोनी गांव के सरपंच के संग चार लोगन घायल हो गई। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़का लापरवाही आगू आए है। वन विभाग के शुरुआती जांच में पता चले है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के ले बाहर जाके 8,000 ले ज्यादा पेड़ काटे गए है। मामला की गंभीरता ले लेवत विभाग है दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दे है। बछर 2017 में ये परियोजना पर बालोद कांकेर कोंडागांव और बस्तर जिला के 402 हेक्टेयर ले ज्यादा वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे गई रही से। केसकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटे की मंजूरी मिले रही, जेमा जांच समिति है पाईस की 8,000 ले ज्यादा पेड़ स्वीकृत क्षेत्र ले बाहर काटे गए है। वन विभाग है जिम्मेदार मल्ला तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी मन के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय ला भेज दे गए है। जसपुर जिला में कुनकुरी तपकरा लवाकेरा रद्दा के श्री नदी में बड़का पुलिया और पहुंच मार्ग निर्माण पर राज्य सरकार है करीबन 9,45,00,000 रूपये के स्वीकृति दे है। ये पुलिया छत्तीसगढ़ झारखंड और ओडिशा ला जोड़िया रद्दा में बनाए जा है। पुलिया बने ले तीन राज्य के बीच अवई जवई ज्यादा सुरक्षित और सरल हो जाही। हाल बेरा संकरा पुलिया होए के सेती बरसात के दिन में परेशानी होत रही, एकर सेती लंबा बेरा ले क्षेत्रवासी मन पुलिया के मांग करत रहीन। वन मंत्री केदार कश्यप आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और आईवीआरएस आधारित सूचना और संवाद तंत्र के शुभारंभ करीन। संग्राहक मल्ला जानकारी ले बर टोल फ्री नंबर 9811125813 मा मिस कॉल करना होही। मिस कॉल के बाद 911 ले शुरू हुआ यह नंबर ले उपयोगकर्ता मल्ला कॉल बैक आही। फोन उठावत ही संग्राहक मन अपन स्थानीय बोली हल्बी और गोंडी में घलो जानकारी सुन सकी। अब जानो मौसम के हाल। प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरे और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन द्रोणिका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश ले अंदरूनी ओडिशा और छत्तीसगढ़ ले होवत गुजर ही। एक प्रभाव ले प्रदेश में काली कुछ एक जगह गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। महासमुंद पुलिस एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और कोमा खान पुलिस संयुक्त रूप ले कार्यवाही करत एक ठन एम्बुलेंस ले 75 किलो गांजा जब्त करे है। आरोपी मन ओडिशा ले गांजा लेके महाराष्ट्र जावत रहीन। ये मामला में महाराष्ट्र के 5 जन तस्कर मन ला गिरफ्तार करे गए है और उखर तीर ले गाड़ी और 5 ठन मोबाइल जब्त करे गीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम डहर ले काली राजधानी रायपुर के ईएसआईसी अस्पताल रामाभाठा में निशुल्क जांच शिविर के आयोजन करेगी, जिहां 40 बछर ले ज्यादा उम्र के बीमा होय अब्बड़ झन श्रमिक मन स्वास्थ्य जांच कराई। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के हो बिहाव। देशभर के संग काली छत्तीसगढ़ में 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला नजराना हम आपकी नज़र कर रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में लुटेरा फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल हैं, अमित त्रिवेदी का है संगीत और पसंद हमारे

श्रोता साथियों की है। राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लिल्लू, ऋतु सिंह, राजकोट से राजेश, स्वाति, जगदीश, अडार, नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, सिरसा हरियाणा से सतवीर, देवेंद्र, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम, बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू, बिलाईगढ़ से खेकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका, उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, यवतमाल से सरला, राहुल, रोशनी, विशाल, चेतन, प्रियांशी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन, बुड़गहन से हमारे साथी हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनेता वर्मा, रुद्र वर्मा, अकोला से सुशीला देवी, सदानंद और कुमार गौरव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश, औरंगाबाद से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और ओवी, बठेना पाटन से परमेश्वरी साहू, राजपत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, राजस्थान से मेयर ममता, कीर्ति, भूमिका, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव, जालना से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता, यवतमाल से पंजाब, रामटके, यशोधरा रामटके और श्रव्या रामटके। और इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है ईमेल के जरिए जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी भाटिया, महाराष्ट्र से गंगाधर, प्रमोद, प्रदीप, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, औरंगाबाद से अनिल, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, जा खोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा, हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसबीर, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, उदयपुर से गोपाल, कांता, विवेक, मनीष, प्रांजल और लक्षिता, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े, और लातूर से उस्मान शेख, सायरा और करिश्मा शेख, झारखंड गुमला से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, दूलापुर यूपी से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, निवान और साइना शर्मा ने। भाटापारा से है प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, पथरिया से है नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि, दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। इस गीत की ईमेल के जरिए फरमाइश लिख भेजी है इन साथियों ने भी। चरोदा छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमीदुन सिद्दकी, जिशान अहमद सिद्दकी, शहनवाज अहमद सिद्दकी ने। मदनपुर से हमारे साथी हैं श्रवण कुमार, योगेश और राहुल। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी। पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी।

रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई यामिनी, उमा तिवारी। और श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी। मुंबई से आदिबा, फातिमा, सबा, अंसारी। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती। महादेव घाट, अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज ज्योति और रियांश। देवरी भाटापारा से के आर साहू, कमलेश, कन्नूलाल, रजक, मुरली। लूथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श, आतिका। मजनू काटिल्ला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा, माही। और सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। तेलंगाना से शेख अल्लाबख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई। महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव, निवृत्ति। लुथरा खमरिया से निकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़। तेलंगाना से मोहम्मद बुराहुद्दीन, यूसुफुद्दीन। और लगान पंडरिया से रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार बघेल, साहिल और भारती बघेल ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोता साथियों की ईमेल पर आई फरमाइश के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म का गीत मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है अरिजीत सिंह की आवाज़ में एयरलिफ्ट फिल्म का गीत। कुमार की लिखे बोल हैं, अमाल मलिक का है संगीत, और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं बिलासपुर से छन्नूलाल शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ, नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, महक जहां, और हरियाणा से अंकित मोनी, प्रिंस बोट, साहिल कांगड़ा, दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा, इंदौर से नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक और परी, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नीलिमा अजीम, और जालंधर से ज्योति, मन्नत, भारत, कमल, और सहारनपुर से सोनाली, आशा, सुरेश, पथिक, कृषिव, उदयपुर से कांता देवी, फरीदा, शबनम, किरण देवी, रंजना दवे, शांतिवारी, सबीहा खानम, रईसा और भारती देवी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, आकोट से विनायक, मंगला, विजय, पवन और के संजीव, और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने, पालचुआ मुंगेली से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नजमा बेगम और सरिता, उदयपुर से लाला सोनी, मोहन बाबू और इनके बहुत सारे साथी, अकोला से रमेश, वैशाली, धनंजय, अमरावती से कमरुल्ला और नसीम बेगम, महाराष्ट्र से शंकर, गणेश, शुभम और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश अरिजीत सिंह की आवाज़ में एयरलिफ्ट फिल्म का ये गीत।

साथियों, ईमेल करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपकी नज़र करते हैं सोनू निगम की आवाज़ में, तेरी मेरी कहानी। इस फिल्म से पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदू, भुवन कामरी। पंडरपुर से हैं ललिता, वैष्णव, सोनाली, रेणु, नीतू। महाराष्ट्र से रज्जाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा परवीन, आसिया परवीन। और भाटापारा से हैं दानसिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ। भाटापारा से ही विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी। सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य और मेघा मस्कीन। सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम। उदयपुर से गोपाल, कांता, तिलक, किरण, सक्षम तांबोली और लावण्या तांबोली। और हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज शाह। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, यशु, निरंजन, सौम्या और अविरल सिंह। धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। बठिंडा से परमेन सिंह, मंजीत, करणवीर, तपिंदर, वरिंदर, मरन, एकम, दमन, अभिजोत। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक और मंजू भाटिया। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा से सोहन जोशी, पायल जोशी। जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद।

और सत्यम आनंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए सुनिए इन सभी साथियों की पसंद पर सोनू निगम की आवाज़ में तेरी मेरी कहानी फिल्म का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, इसके साथ ही ईमेल करें गीत सुनिए ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। संध्या के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिस

0: से एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी जोड़ों का अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रूपये की सहायता दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सक्ती जिले में 70 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यक्रम में विशेष रूप से 4 बैगा आदिवासी परिवारों के जोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
8: सभी जिलों में आज के दिन सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 72 जोड़े ने अपना पंजीयन कराया है। इन 72 जोड़ों में से 2 जोड़े जो हैं वो बैगा समुदाय से हैं और हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि बाल विवाह पे रोक लगाने के साथ साथ हम बच्चियों के विवाह पर भी जो शासन की योजना उनका लाभ उनको पूरी तरीके से दिला रहे हैं।
7: राज्य सरकार ने बीते 6 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल का आदेश जारी किया था। इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रुक्तिमा यादव को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

0: है। इससे पहले जारी आदेश में रुक्तिमा यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया था। वहीं आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज लोकभवन में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राज्यपाल रमन डेका से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमैन तोमन साहू और अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने राज्यपाल को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दी। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन्स हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। कोरबा जिले में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास हुए सड़क हादसे में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरुण कुमार त्यागी को हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया था। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए कार द्वारा गेवरा से सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान चोटिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक पार्सल वाहन से टकरा गई। इस दुर्घटना में श्री त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के हरदी बाजार रोड में आज कोयले से भरे ट्रेलर के पलटने से मोटरसाइकिल सवार पुरुष और महिला इसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में अमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित 4 लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले में 3 धान खरीदी केंद्रों कीरित, कराड़ी और बिर्रा में करीब 4000

700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रूपये बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद 3 थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS आधारित सूचना और संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। वनोपज संग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर

0: में महत्वपूर्ण जानकारियां सुन सकेंगे। जानकारी सुनने के साथ ही उपयोगकर्ता अपनी राय, अनुभव और सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। महासमुंद पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक एम्बुलेंस से 77 किलो गांजा जब्त किया है। ये गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस, पायलटिंग कार और 5 मोबाइल फोन समेत कुल 50,45,000 रूपये की संपत्ति जब्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हवा की गति तेज रहने के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सोशल मीडिया पर रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सही दवा आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान के तहत रायपुर जिले में औषधि प्रकोष्ठ की टीमों ने 6 और 7 मई को राजधानी के विभिन्न थोक और फुटकर दवा दुकानों पर सघन छापेमारी की और रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड के ग्राम पंचायत गोढ़ी में पक्षियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह का समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये
2: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको देते चलें। श्रोताओं, कार्यक्रम में स्वास्थ्य वार्ता के क्रम में फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को प्रसारित किया जाता है। इस बाबत इसकी रिकॉर्डिंग इस महीने 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से 4:30 के बीच की जाएगी। इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा का विषय होगा आंखों की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति आचार्या। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इन नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए। हमारे नंबर है मित्रों 2665 92 और 3100 26। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। सूचना यहीं समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में बोल राधा बोल फिल्म का गीत। समीर की रचना, आनंद मलिन का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों ने हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाई है उनके नाम हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनित कुमार, कृष्टि पटवा, खरगोन से अशोक, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा राजकुमार बोड़ाना, गोगावा से संजय, माया, कान्हा और कृष्णा, सनावत से किशोर, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी और प्रणय सावले। इसी गीत की फरमाइश आई है रतलाम से जगदीश, रंजू, युवराज और शिवांगी ने की है। यवतमाल से है संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, संबलपुर कांकेर से पागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। और गिरिडीह से हमारे साथी हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ।

अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री, शिवानी, प्रियंका, अभय, गुड्डू कुमार, ये हैं झुमरी तलैया से, गिरडी से हैं मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश, रिया जिया, टुशी, आरुषि, अनिरुद्ध और बाबू, बस बेरिया से हैं बीके सिन्हा, बांके बिहारी और इनके बहुत सारे साथी, तखतपुर से हैं दिलीप कोल, जैमुन कोल, नारायणी कोल, नांदघाट से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा सुमार, साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति, सक्षम शाक्य और डीके शाक्य, अमरावती से सिद्धार्थ, प्रणय, प्रसिद्धि, महेश, हीरामण और प्रतिभा, बिलासपुर तेलीपारा से गुणवंत, श्रीवास, करुणा, आयुषी, विवेक और आयुष श्रीवास, पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु, विशाल और तिवांशी खेरा, शालिनी खेरा, रायपुर से विनोद, वीणा, विविधा, पंडरपुर सिटी से प्रशांत, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा, डोंगरगांव से राजपाल गजभैये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभैये, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश, पायल, मिथिलेश, यदु, विष्णु साहू, अंकिता और वैदेही जोशी, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी। इसी गीत की फरमाइश भेजी है फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, कुरनूर, अविराज, गुरलाल, शुभदीप, गुरमान, दतरंगी भाटा पारस से हमारे साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, भिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल और दीवाना रेडियो लिसनर क्लब, गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, जमशेदपुर से रोहन और आर्य जयसवाल, सौंगा से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, चंदन, गजेंद्र कुमार, पार्थ, हियांश, चंदन और दिल्ली से हैं लाल बाबू और इनके साथी, कवर्धा से कैलाश, पूर्णेंद्र, मुकुंद, साहिल, मंडी डब्वाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, तानिया, कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशवंत, खुशांत और निशांत साहू और सरगुजा से हैं अजीता पॉल, लक्ष्मी, प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से हैं अनुश्री, प्रदीप और इनके साथी, बरकाकाना से हैं अफजलताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और अफजल मलिक, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम, अब्दुल सलाम, उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना, फरदीन खान, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, उत्कर्ष, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, उजभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवान्या और अन्नू गोस्वामी, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र, सोनू, आशीष, कपिल साहू, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र, आदर्श, सार्थक और अलौकिक, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर कौसर, रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसैया फातिमा, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर बोल राधा बोल इस फिल्म का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के युगल स्वर में बादशाह फिल्म का गीत। समीर की रचना, अनु मलिक का है संगीत और प्रसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। कुलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडु रंग, उदयपुर से रमेश, भारती, विनित, मिथिल, कुरावली से रासिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, बोरी खुर्द से सुधाकर, प्रशांत जगुताई, संचित प्रथमेश और स्वामी देशमुख, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानंद एले, नवदीप एले, विश्वदीप एले, अशोक एले, हिसार से राजकुमार प्रमोद, पुष्पेंद्र, राजकोट से जूली, प्रवीण और प्राची, तिलहारा से प्रकाश, नर्मदा, सुजाता, दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस, मंदसौर से घनश्याम मोदी, गोपाल, रमेश, मोहित और सक्षम मोदी, बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, परवीन, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुनेद मुजावर, सबिया, मिखाइल, जैनव और खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, महाराष्ट्र से पीएस निर्मला, विशाल, महाराष्ट्र से ही नारायण और मंगला, यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री, सूरज और प्राची एकलव्य, तखतपुर से हमारे साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक समर, वेदिका, महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या, सविता, पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, समिया, अनस, रेहान, मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू, कोहका मिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजित, आयुष, नंदिनी, धमधा से अमित, शकुन, आरुषि, आदित्य और अंजलि, भिलाई नगर से अशोक श्याम कंवर, प्रमीला और आशमा श्याम कंवर, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, बागबहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, पथरिया से चंदुलाल श्रिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या, हिंगोली से शाजी पोटखे, नंदा, हनुमान और उत्तम, और दिल्ली से सुखविंदर सिंह, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय और शंकर पांडे, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष, लाड़ो, कोयल और नानक चंद्र मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष, सिक्का, कुनिका, डुग्गू, और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता ने, महाराष्ट्र से हैं रुपेश महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, वीरमगाम जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमीला सैनी, जैमिन और भावेश, हेतल, कृष्णा भावसार, इन सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, बादशाह फिल्म का गीत अभी आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के युगल स्वर में, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 7:20 हुए हैं। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू संगी संगवारी दीदी महतारी मल्ला अंजोरी भाई के जय जोहार राम राम। संगवारी हो कथे न जागो गा मोर भैया दिन जागे के आगे, छत्तीसगढ़ के माटी है चंदन कसमा महागे, लागत है पाए हन अब हम सूरज रा, हक मांगे पाए हवन छत्तीसगढ़ राजला।

बात करत हन बहुत ही उपयोगी और सुखद जानकारी के विषय में, वो है वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वास के बारे में। आज हम खेती किसानी के रासायनिक खातु के उपयोग तो बहुत करत हन, बढ़ बाढ़ गया हवा है, तेकर पाए कि भूइया के लिए जो ताकत है वो दिनों दिन कमजोरा होता हवा है। ऐसा बेरा में वर्मी कंपोस्ट हर हमारे किसान भाई मन पर सबले बहुत अच्छा साबित होता हवा है। केचुआ जिला हमन गेंगरबा कथन घलो कहे जाते, एकर मदद ले बने ये जैविक खातु हर माटी ला उपजाऊ बनाते और फसल ला मजबूत करते और खर्चा घलो हर कम लागते। वर्मी वास एक किस्म के एक तरल जैविक खातु आए जेन ला पौधा ऊपर छींचे ले फसल ह हरियर हरियर हरा भरा रही थे और रोख रही गलो है घर झट के बढ़वार नहीं हो तीर तिखार में नहीं आवा है। सबले बड़े बात यह हवे कि वर्मी कंपोस्ट बनाए की जोन बात हवे उमें ज्यादा खर्चा नहीं आवा है और गांव घर के गोबर के सूखा पाना है चाहे खेती किसानी के बाँचे खोचे कचरा के घलो हरे का काम आते और पर्यावरण ला घलो यार सब पर आते। संगवारी हो कभू हमन जैविक खेती अपनाबो तो हमार माटी पानी और स्वास्थ्य तीनों हो सुरक्षित रही। तो चलो आज हमन ये बात का संकल्प लीन कि जीवन सुघर बनाना है तो मोर बात ला सुना है। जहर वाला खातु कपड़ा और जेमा जन होए कोनो प्रकार के नुकसान ओहिला जिंदगी रह सुगर हमर जीन भर आगो। वर्मी कंपोस्ट की वर्मी वास के लाभकारी करो कभू अपन नहीं हुए मंगान तो अब आवा जमो जन जानिन कुछ काम और ज्ञान के बात।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संगवारी हो, आज हमर कार्यक्रम महामन सुनात हमन फोन इन कार्यक्रम जिमा विषय हवे खरीफ फसलों में बीज उपचार विधि के महत्व एवं सावधानी। एमा विशेषज्ञ हवे डॉक्टर RKS तिवारी प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर और ओमन तिरन गोट बात करत हवे हमर पंचो भाई तलाव पंचो भाई बढ़िया फोर के पूछो।
4: संगवारी हो, राम राम, जय जोहर। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई। अब आज शुक्रवार के अपन लगा रहे थे अपन के मन पसंद कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम।

0: जैसे हमन अक्ति तिहार मनाथन ओकर बाद हमर जो खेती किसानी के बूता काम है हमन थोड़ा कन अगवाते यानी ये कही तो भद्रा जाते अक्ति तिहार मानथन ओकर बाद हमन जो अपन खेत के तैयारी में लग जाथन खातू माटी की फेकाई खेत के तैयारी संगे संग बात करबो तो हमन जो बीजा की तैयारी हवा ओकर कौन प्रकार से हमन एकर देख रेख करी काबर की इतका दिन के चार महीना की मेहनत करा थन और वो अच्छे से बीजा ला नहीं पाबो बीजा के जतन नहीं कर सकबो बीजा के उपचारित नहीं कर पाबो तो कहीं न कहीं जो बेरा हमन फसल जब लुवाई कटाई करथन वो बेरा ओला देखे ला मिलते और सबसे ज्यादा नुकसान होते केवल हमन बीजा के ओकर चिन्हारी नहीं कर पान। आज के फोन इन कार्यक्रम में इसने है सुघर अकन विषय हवा खरीफ फसल में बीजा उपचार के विधि ओकर महत्व ओकर सावधानी हमन कौन प्रकार से करी आज हमारे बीच में डॉक्टर पहुना विशेषज्ञ के रूप में आज आए हवा एवं है डॉक्टर आर के एस तिवारी कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के डॉक्टर साहब आपन के स्वागत करथन राम राम जय जोहार
1: राम राम जय जोहार।
0: जे प्रकार के हमन अपन शरीर के जतन करथन बीमार झन पड़ी की के टीका लगाथन आनी बानी के सुई पानी लगाथन उसे ने हमन धान के फसल अपनावथन कोनो प्रकार के खरीफ फसल अपनावथन तो का बीजा उपचार होते एला बताता आप।
1: खरीफ फसल में तो धान के अलावा बहुत जो दलहनी कुछ फसलें हैं तिलहनी फसलें हैं और बीज उपचार तो सबके लिए बीज उपचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम लागत में कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रकबा में आप क्षेत्र को उपचारित कर सकते हो बीज के माध्यम से।
0: अच्छा अच्छा
1: बीज के माध्यम से ही आप चाहें तो बीज में जितनी भी बीज जनित जो बीमारियां हैं जो लगती हैं उसका निराकरण बीज उपचार से हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो ये बीज जो है बीज उपचार एक तरह का टीकाकरण का कार्यक्रम है जैसे हम पशुओं में आदमियों में सब में जो टीकाकरण करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि जो बीमारियां संभावित जो बीमारियां आने वाली हैं उनसे उनका बचाव हो सके।
0: अच्छा अच्छा
1: तो इसी तरह से फसलों में भी बीज उपचार वो एक तरह का टीकाकरण है जिसको करना बहुत आवश्यक है अनिवार्य है। अभी दुर्भाग्यवश ये देखा गया है कि किसान भाई इसको नहीं करते हैं बहुत कम किसान है जो बीज उपचार के महत्व को समझते हैं और बीज उपचार करते हैं। अदरवाइज वो जहां से लाते हैं जो भी बीज है उसको सीधा खेत पे डालने का काम करते हैं।
0: आपन का गोड़ बात करबेज करबो लगत है संगवारी बन फोन करत है आरो आत हवे पहली संगवारी बन गोड़ बात करते हैं। हेलो
2: हेलो किसानवाणी
0: हेलो किसानवाड़ी मामा पंचू भैया अपन के स्वागत करता हूँ झोंका जय जोहर राम राम कौन बोला कहाँ बोला था जी
2: जय जोहर राम राम गा पंचू भैया मैं नानघाट कतर बोले बोला था भागसी राजपुर।
0: आज के कार्यक्रम में अपन के स्वागत हवे जय जोहर राम राम
2: धन्यवाद भैया।
0: आज हमारे बीच में पहुना हवे डॉक्टर आर के तिवारी जी मन ये मन हमारे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर ले
2: जय राम गा तिवारी भैया
1: जय जोहर जय राम।
2: हाँ बीज उपचार के बारे में जानकारी देगा भैया
1: बीज उपचार पहले तो ये समझ लें कि बीज उपचार करना क्यों जरूरी है और आप तो जागरूक किसान हैं मतलब किसान आकाशवाणी से जुड़े हैं अच्छी खेती करते हैं कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में इसके लिए भी एक मुहिम चलाइए क्योंकि बीज उपचार लोग करते नहीं है
2: सही बात और
1: बीज उपचार का महत्व भी नहीं समझते। तो बीज उपचार तो एक ऐसा पद्धति है जो दुनिया भर के जो कीड़े बीमारियां हैं उनसे बचाने का काम करता है बीज उपचार। बीज उपचार से आप स्वस्थ कर सकते हो अपने बीज को पौधे उससे स्वस्थ तैयार होंगे रोगग्रस्त नहीं होंगे तो जब ऐसी स्थिति होगी तुम्हें जो बीमारियां हैं वो कम आएंगी। और बीज उपचार में दो चरण में बीज उपचार को हम पूरा करते हैं। पहले चरण में तो स्वस्थ बीजों का चुनाव करने के लिए बीज उपचार करते हैं जिसको नमक के घोल का उपचार बोलते हैं। तो जब आप उसमें डालते हो वैसे भी आप पानी में भी डालोगे धान के बीज को तो आप देखोगे कि जितना भी बदरा मट बदरा है वो सब ऊपर आ जाता है। सादा पानी में डालने में बदरा भर आता मट बदरा नहीं आता लेकिन अगर नमक का घोल डालोगे आप 17.5% तो उसमें मट बदरा बदरा दोनों ऊपर आ जाएंगे और जो पूरा फूल पुष्ट बीज है वो नीचे रहेगा। तो पुष्ट बीज को अलग करने का तो ये तरीका है जब नमक के घोल में उपचार करो तो फिर उसके बाद उसको पानी में धोना आवश्यक है 2-3 पानी में ताकि उसमें नमक का असर न रहे। और उसके बाद ये बुआई के तुरंत पहले ही करना एक दिन पहले आप इस चीज को ध्यान में रखें
2: ठीक भी है।
1: और उसके बाद फिर आप इसको फैला दें पानी में जब धो लिए 2-3 बार तो उसको पानी में उसको फैला दें और उसके बाद फिर इसमें दवाइयों का उपयोग करना बीज उपचार की जो दवाइयां तो जैविक दवाइयां हैं ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करो उसी के साथ आप कुछ जैव उर्वरक को अगर डालते हो जैसे ये जो स्पाइलम है ये धान के लिए जो काम आता है उसको भी दे लो, इसमें 10-10 ग्राम दोनों को लेके 1 किलो बीज के हिसाब से और इसको उपचारित कर दे। तो इसको करने से होगा ये कि शुरू में चूंकि पौधा अपना नाइट्रोजन बनाता नहीं है, ये नाइट्रोजन देने का काम करेगा।

0: ट्राइकोडर्मा जो है वो बीमारी जितनी भी प्रकार की है सबसे वो सुरक्षित रखेगा उसको, और पौधे की
1: जी
0: बढ़वार अच्छी करेगा। तो
1: ठीक
0: जैविक दवाइयों से आप उपचार करो। अगर आप किसी कारण से जैविक दवाई नहीं मिल पाती या नहीं करते हो तो कम से कम
1: हाँ
0: रासायनिक दवाइयों से करो।
1: ठीक
0: रासायनिक दवाइयां हैं, साफ है, जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है,
1: हाँ
0: दूसरा ये हेक्साकोनाजोल है, जिनेब है, ये दोनों का फार्मूलेशन आता है।
1: ठीक
0: एक और
1: ठीक
0: फार्मूलेशन आता है उसका, टैबिकोनाजोल का, रेक्सिल नाम से। ये सब बीज उपचार की स्पेसिफिक दवाइयां हैं,
1: ठीक
0: तो
1: भैया
0: इनसे बीज उपचार आप करो। और बीज उपचार करके फिर चाहे उसको आप डायरेक्ट बोनी करो या फिर थराहा में लगाओ, जिसमें भी
1: हाँ
0: लगाओ
1: हाँ
0: उसमें कर सकते हैं।
1: ठीक
0: भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेरा निकाल के फोन लगाया।
1: धन्यवाद भैया, बहुत सुघर जानकारी मिली चकाशवाणी बिलासपुर ने।
0: आपन का गोड़ बात करबेज करबो लगत है, संगवारी बन फोन करत है, आरो आत हवे पहली संगवारी बन गोड़ बात करते। राम राम, जय जोहार, कौन बोलत, कहाँ बोलत है जी?
1: जयराम हो, मोर नाम मुंशी प्रधान है,
0: अच्छा,
1: ग्राम पहरिया से बलौदा से बोला था सर। सर मोर सवाल है कि जो खरीफ फसल के जो बीज है तेकर उपचार के बारे में थोड़ा सा बतावा, और ओकर सावधानी कैसे रखबो तेकर बारे में बतावा।
0: प्रधान जी जय जोहार। खरीफ
1: जय
0: फसल जो भी आप
1: जोहार
0: लगाते हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो दलहनी फसल हो, चाहे वो तिलहनी फसल हो, और सब में बीज उपचार का महत्व है। बीज उपचार एक तरह का टीकाकरण है। बीज उपचार करने से बीज के द्वारा या बीज के अंकुरित होते समय जो भी बीमारियां पनपती हैं उनसे सबसे बीज उपचार जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है पौधे को भी और बीज को भी। अंकुरण अच्छा होगा, पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, शुरू में जो बीमारियां आती हैं वो नहीं लगेंगी। तो ये तो बीज उपचार का महत्व है, जो हर किसान भाई को बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार में दोनों तरीके हैं। बीज उपचार के साथ हम जो जैविक दवाइयां या रासायनिक दवाइयां हैं उनका भी उपचार करते हैं बीज में, और साथ में जो जैव उर्वरक हैं उनको भी बीज उपचार के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे दलहनी जितनी भी फसल है उसमें बीज उपचार में हम राइजोबियम कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करोगे तो आपके उसमें दलहनी जितनी भी फसल है उसकी बढ़वार अच्छी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि शुरू में जो नोड्यूल्स हैं ये एक तरह के बैक्टीरिया है जो ये नोड्यूल फॉर्म करते हैं। खेती में लगातार खेत में जितने भी ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनकी कमी होती जा रही है। हम लगातार रासायनिक दवाइयों का, खाद का उपयोग कर रहे हैं। अब इनकी संख्या कम है तो जाहिर है कि ये अपना अच्छे से काम नहीं करेंगे, और ये बीज उपचार के माध्यम से हर बीज के चारों तरफ ये जो जीवाणु हैं ये खेत में पहुंच जाते हैं बीज के साथ। तो कल्चर्स जो हैं उनसे भी बीज का उपचार करना है, रासायनिक दवाइयां या जो जैविक दवाइयां हैं उनसे भी इस्तेमाल करना। सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि अगर आप दलहनी फसलों में बीज उपचार कर रहे हैं या तिलहनी फसलों में बीज उपचार कर रहे हैं या सब्जियों में आप बीज उपचार कर रहे हैं, सबके लिए अगर आप जैविक सिस्टम अपनाएंगे तो उससे न तो बीज को नुकसान होगा, न तो जमीन को नुकसान होगा, और उतना ही कारगर तरीके से काम करेगा। तो ये रिकमेंडेशन में है कि राइजोबियम कल्चर आप लो 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, उसी के साथ आप ट्राइकोडर्मा लो 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, दोनों को मिक्स करके अच्छे से उपचारित कर दो 1 किलो बीज को 20 ग्राम के इस मिश्रण से। फिर आप देखो, आप जब डालोगे खेत में तो आपको फर्क नजर आएगा। तिलानी फसलों में भी ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल करो। कुछ ऐसी तिलानी फसल हैं जिसमें नोड्यूल हैं, जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, तो उसमें आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करो। इस तरह की फसल हैं जिसमें लेग्यूम नहीं है, ट्राइकोडर्मा के साथ साथ आप एजिटोबैक्टर का इस्तेमाल करो जो नाइट्रोजन का काम देता है। तो शुरू में नाइट्रोजन चाहिए उस पौधे को बढ़वार करने के लिए, ये सब चीजें चाहिए। तो जैविक जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, जिससे हमें करना चाहिए। आजकल जो प्राकृतिक खेती जो अभी शुरू हुई है उसमें हम बीजामृत भी बनाते हैं, इसमें गौमूत्र से शोधन करके बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हो आप बीज उपचार में, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह से बीज उपचार की दवाइयां, कुछ रासायनिक दवाइयां भी मैं बता रहा हूँ जिनका आप उपयोग कर सकते हो। एक तो आपका टैबिकोनाजोल है जो रेक्सिल नाम से आता है, हेक्साकोनाजोल प्लस जीने में जो अवतार के नाम से आता है, एक आता है आपका कार्बोक्सिन प्लस थीराम जो उसके नाम से आता है आपका विटावैक्स पावर के नाम से, और एक जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब साफ के नाम से आता है। तो ये दवाइयां हैं चारों, इनमें से कोई भी दवाई लें और 3 ग्राम के हिसाब से प्रति किलो बीज के हिसाब से आप रासायनिक दवाइयों को अभी उपयोग कर सकते हैं। एक सावधानी बरतनी रहती है कि कभी

0: भी जब आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं और फफूंद नाशक दवाइयां भी उपयोग कर रहे हैं, तो उससे सबसे पहले आप फफूंद नाशक दवाइयों से उसका उपचार करें और उसके बाद फिर कल्चर का इस्तेमाल करें।
1: ठीक जी प्रधान जी।
2: हाँ सर जी।
1: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन बेरा निकाल के फोन लगाया। एक पहले हम गोट बात करते रहे वो बताता आप।
0: हाँ तो यही कि जो बीज उपचार की कई विधियां जो है जिसके बारे में बात कर रहे थे कि नमक के घोल का उपचार हो गया, अभी आजकल एक प्राकृतिक खेती में जिसमें एक सिस्टम बनाया है हम लोगों ने, सरकार ने भी बनाया है।
1: अच्छा अच्छा।
0: कोई भी अतिरिक्त चीजें उस खेतों में नहीं डालना है, प्राकृतिक तरीके से जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं का इस्तेमाल करना। प्राकृतिक तरीके में जैसे गाय का कच्चा गोबर है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: पौधों के वो जो है पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से ये प्राकृतिक खेती में इन चीजों का इस्तेमाल किसान भाइयों के यहाँ हम लोग प्रदर्शन डाल रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती का भी।
1: डॉक्टर साहब आपन को गोड़ बात करवेज करबो, संगवारी फोन कर रहे थे, पहले उनका गोड़ बात कर रहे थे। हेलो।
3: जय राम भाई।
1: राम राम, जय जोहर। कौन बोलत, कहाँ बोलत है जी?
3: भाठा पड़ा बोलत रहे पंचू भाई, हिरुराम साहू।
1: स्वागत है आज के कार्यक्रम मापन के। राम राम, जय जोहर।
3: राम राम, जय जोहर पंचू भाई।
1: तो आज के हमारे बीच में पहुना हुआ तिवारी जी, और आप मतलब बताते हुए कि अभी बेरा में कैसे मन बीजा उपचार करके अच्छा फसल ले सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार साहू जी, बताइए।
3: भैया जाके लेना है भैया की खरीफ फसल में बीज उपचार के बारे में कैसे ढंग से बुलाए बीज।
0: कौन सी खरीफ फसल लगा रहे हैं आप अभी, धान के अलावा?
3: उड़द उड़द ले रहे हैं भाई।
0: उड़द ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं?
3: अब थोड़ा सा वो काहे कुछ डालेंगे, फल्ली वल्ली।
0: फल्ली डालेंगे, अरहर डालेंगे।
3: आओ।
0: तो देखो दो तरीका है, ये जितनी भी फसल अभी बता रहे हो धान के अलावा, इनका एक बीज उपचार करने का एक अलग तरीका है जिसमें दो तरह से बीज उपचार इनको आपको करना है। एक जितनी भी दलहनी फसल है और जितनी भी तिलहनी फसल है जो में वो लेग्यूम बनते हैं, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, मूंग उड़द है, तो अरहर है, ये सब दलहनी फसल है। इनके बीज उपचार के लिए एक तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना है अपने को। अलग अलग फसल का जो राइजोबियम कल्चर है वो मिलता है आपके कृषि महाविद्यालय रायपुर में भी है, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में भी है, भाटापारा में भी कुछ बना रहे हैं आपके कृषि महाविद्यालय में। तो राइजोबियम कल्चर का एक तो आप उपयोग करो 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, राइजोबियम कल्चर के साथ ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करो। ये जितनी भी दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल में और एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करो। जितनी भी जैविक दवाइयां आप डालोगे यूज करोगे, चाहे वो बीज उपचार में करो चाहे वो छिड़काव में करो, बीज उपचार में सभी की मात्रा 10 ग्राम रहती है 1 किलो बीज के हिसाब। एक तो दलहनी फसल के लिए आपको बता दिया कि इस तरह से आपको करना है। अब रहा धान का जो आप बता रहे हो, धान में आप तो स्वर्ण बता रहे हो ले रहे हो, और क्या ले रहे हो?
3: महामाया बोलते हैं, हल्का फुल्का
0: महामाया, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण लेते हो। अब स्वर्ण में एक रोग आता है भूरा धब्बा रोग।
3: अच्छा।
0: तो उसमें देखे होंगे कि धान में बालियों में वो दाने जो है ना बदरंगे हो जाते हैं।
3: अच्छा।
0: और तो ये जो बीमारी है ये बीज के द्वारा ही फैलता है।
3: अच्छा भाई।
0: तो आप अगर बीज का उपयोग करना है आपको तो इसका बीज उपचार करना जरूर।
3: अच्छा।
0: बीज के उपचार के लिए नमक के घोल का उपचार और उसके बाद फिर दवाइयों से उपचार, चाहे वो जैविक दवाइयों चाहे रासायनिक दवाइयों, तो ऐसे कर सकते।
3: हाँ डॉक्टर। हाँ हो गया डॉक्टर साहब।
0: ठीक है, चलिए अच्छा उत्पादन हो, खूब सारा इस बार धान बेचो, अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करो।
3: हाँ धन्यवाद डॉक्टर साहब,
0: बीज उपचार करके।
3: हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ
1: धन्यवाद। आप फोन लगाया करबर। डॉक्टर साहब अपन को जानना ये चाहबो कि अगर हम बीज उपचार करत हन, अगर संगे संग अगर हम माटी जांच करावत हन, तो दोनों में कते कन हम अंतर पा सकत हन?
0: नहीं, मिट्टी जांच तो सबसे आवश्यक ही है, वो तो बीज के पहले की ही बात। खेत के जो चुनाव या खेत में जब हम जुताई करते हैं,
1: अच्छा अच्छा,
0: हर तीन साल में या हर 5 साल में आपको मिट्टी की जांच कराना बड़ा जरूरी है।
1: अच्छा, जरूरी की दो।
0: हाँ, मिट्टी की जांच इसलिए जरूरी है कि उसमें तत्वों की पता चल जाता है कि किस तत्व की कमी है, या पीएच, कभी कभी क्या होता है पीएच जो है ना वो बदलता रहता है लगातार, चूंकि हम खाद डाल रहे हैं पानी भर के रख रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब लगातार संगवारी फोन कर रहे हैं। हाँ। आरो आगे है। हेलो।
4: हेलो।
1: राम राम, जय जोहर। कौन बोला, कहाँ बोला था जी?
4: जय जोहर भैया जी। हाँ, मैं रामेश्वर साहू बोलता हूँ, ग्राम कटनी से, जिला जांजगीर चांपा।
1: अच्छा, स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपके।
4: धन्यवाद भैया।
0: बताइए रामेश्वर साहू जी, क्या जानना चाहते हैं?
4: हाँ। वक्त ये भी हो गए।
0: हाँ।
4: वक्त ये बाद हम की किसान मन के दे खेती बाड़ी के काम चालू हो जाये।
0: हाँ।
4: मन बताता की हमन कौन प्रकार से बीज के उपचार करें जेकर से हम अच्छा फसल के पैदावार मिल सके और अच्छा हम आमदनी दे सके।

0: वही बताता था।
1: कौन कौन खरीफ में फसल लगा रहे हैं आप?
0: हम धान ही लगाता नहीं थी।
1: धान के अलावा कुछ और भी लगाना शुरू करिए।
0: हाँ,
1: कम से कम मेढ़ों पे तो लगा सकते ना, राहर को।
0: हाँ हाँ, लगातन की मेड़ में राहर वगैरह लगातन।
1: हाँ,
0: और विशेष तो खेती धान की ही हुआ था।
1: तो देखो, धान के बीज उपचार में तो आपको एक तो नमक का घोल का उपचार करना है, 17.5% नमक के घोल का उपचार, जिससे आपके जो स्वस्थ बीज का चुनाव आप कर पाओ। जितना भी ऐसा बीज है जो रोगग्रस्त है, जिसमें अंकुरण नहीं होगा या जिसमें पौधा कमजोर होगा, वो सब बीज अलग हो जाता। ये मत समझिए कि वो बीज आपका खराब है। उसका इस्तेमाल आप खाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल बुवाई में बीज का इस्तेमाल नहीं करना। एक तो नमक के घोल में उपचार कर ले। ये होगा कि आपका 10 किलो बीज अगर रहेगा तो हो सकता है कि 8 किलो बीज ही आपको मिले या 9 किलो बीज मिले, 1 किलो आपका वो बदरा निकल जाए। लेकिन अब वो जो 9 किलो बीज से जो पौधे तैयार होंगे ना, उसमें हर पौधा स्वस्थ रहेगा, कोई पौधा जो है वो कमजोर नहीं रहेगा। तो एक तो ये नमक के घोल का उपचार बहुत जरूरी है, और ध्यान रहे कि पानी से धोना जरूर है नमक के घोल में उपचार करने के बाद। दूसरा, जब ये उपचार हो जाए तो फिर आप जो दवाइयां हैं बीज उपचार की, जो टीकाकरण वाली दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल करना है, चाहे वो जैविक दवाई हो। जैविक दवाई में धान के लिए अच्छा ये है कि आप ट्राइकोडर्मा एजो स्पाइलम, ये दो कल्चर हैं जो धान के साथ इनका बीज उपचार करके आप लगाओगे तो आपको अच्छा उत्पादन दिखेगा। एजो स्पाइलम या एजोटोबैक्टर मिल जाए या एजो स्पाइलम मिल जाए, और साथ में ट्राइकोडर्मा 10-10 ग्राम इनकी मात्रा रहती है 1 किलो बीज के हिसाब। तो इससे आप बीज उपचार कर लो। रासायनिक दवाइयां जो है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। साफ है, रैक्सिल है, अवतार है, कई सारी दवाइयां हैं, अलग अलग फार्मुलेशन से आती हैं, अलग अलग कंपनी की भी आती हैं। हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेबाइ, एक कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, एक जो है टैबिकोनाजोल है। ये दवाइयां हैं जिनको आप बीज उपचार के लिए उपयोग में ला सकते। आप धान में भी ला सकते हो और दलानी तिलानी फसलों में भी ला सकते। तो इस तरह से आप बीज उपचार कर सकते हैं।
2: अगर अभी बेरा हम देखी तो परिवर्तन खेती डहर अगर चेक करी जाए तो कहीं ना कहीं हम जो खेती किसानी में दोहरा आमदनी कमा सकते हैं। कब क्या प्रशासन भी चाहता है कि हम परिवर्तन खेती का थोड़ा चेत करी, यानी बनी फसल अपना के दोहरा आमदनी कमाई। अभी बेरा में अपन फोन लगाया, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार भैया।
2: डॉक्टर साहब, जैसे बात करी हमन, कई बार ऐसे होते कि हमन बाजार ले बीजा लाथन और कहते कि बीजा उपचारित हवे के, तो जैसे हम बाजार जावा थन तो खरीफ फसल जो आनी बनी की जो बीजा भात लावा थन, ओकर चिन्हारी कौन प्रकार से करी के एमा?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और खासकर सब्जियों में ये ज्यादा देखा गया। आप ये समझ लो कि वो जो बीज उपचार से जो उपचारित दवाइयां पैकेट में लिखा रहता है, वो बीज में तो ठीक है, बीज के लिए ठीक है कि बीज को उपचारित कर दिया गया।
2: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन उसका असर जब बीज अंकुरित होगा या जब पौधा बनेगा, उसमें उस दवाई का असर नहीं होगा। कोई भी दवाई का जो असर है बीज उपचारित जो दवाई,
2: अच्छा,
1: वो 12 से 15 दिन तक रहती है। और जो ये पैकेट्स में आती हैं, ये जो दवाइयों से उपचारित रहता है बीज,
2: अच्छा अच्छा,
1: ये तो पुरानी हो जाते हैं। ये बीज को उपचारित कर दिया तो बीज में जो चीज है, कोई अगर जीवाणु है उससे, तो वो ठीक है, उसको वो ठीक कर देगा।
2: डॉक्टर साहब,
1: हाँ,
2: गोड़ बात आगे करबो, पहले संगवारी बनकर गोड़ बात कर लेते।
1: हाँ हाँ।
2: हेलो
0: हेलो।
2: हाँ, राम राम, जय जोहार। कौन बोला, कहाँ बोला था जी?
0: राम राम, जय जोहार। मैं दिलीप मारावी जिहुली से बोला था। हाँ, बीजा उपचार करा था, उनका सावधानी कहा कर रखे बताता हूँ।
1: दिलीप जी, जय जोहार।
0: जय जोहार, जय जोहार।
1: हाँ, बीज उपचार में एक सावधानी तो ये बरतना जरूरी है कि जब भी आप किसान भाई जो लाए उपचार करने के लिए, जो भी दवाइयाँ लाए, कल्चर लाए, उसको अच्छे से पढ़ के देख लें कि उसके एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। पहला तो ये सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरा ये कि जितने भी जैविक दवाइयां हैं वो कोशिश करें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो उत्पादित हो रही हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल जैविक दवाइयों का करेंगे, क्योंकि वो ताजा दवाइयां उपलब्ध कराते हैं।
2: अच्छा, प्रमाणित
1: रहता, प्रमाणित रहता है। तो कोशिश करें, अगर कोई बाहर की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी जहां से भी ले रहे हैं उनसे रसीद लें कि हाँ, आपने ये दवाई दी है और जितना उसमें बताया गया है उतना उसमें जीव की मात्रा है, ये देखना जरूरी है। तो एक तो एक्सपायरी करना जरूरी है, दूसरा ये। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो शासन ने बैन करके रखी है। तो जब आप बीज उपचार किसान भाई करें तो ये ध्यान में रखें कि उन दवाइयों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है जो शासन ने बैन कर रखे, जैसे मोनोक्रोटोफास को बैन कर दिया है, थायराम को बैन कर दिया है, तो इस तरह की दवाइयों को हमें उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा ये कि बीज उपचार हमेशा बुवाई से 12 घंटे पहले ही करना है। बीज उपचार करके आप रख नहीं सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर कल हमें बुवाई करना है तो आज जो है

0: बीज उपचार करके रख लें और कल जो है हम उसकी बुवाई कर दें। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं। दूसरा, जैविक और रासायनिक दवाइयों दोनों को अगर एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये जरूरी है कि जैविक दवाई की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा दें और पहले रासायनिक दवाई से उपचार करें, फिर उसके बाद जैविक दवाई से करें। जैविक दवाई से के बाद रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जो रसायन है वो कभी कभी जैविक दवाइयों को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जो किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। जो मात्रा बताई गई है, अगर 3 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से बताई गई है तो वही मात्रा लेना है, उससे न कम लेना है न उससे ज़्यादा लेना है। इसी तरह जैविक दवाई की मात्रा हमने 10 ग्राम बताई है, 10 ग्राम ही चाहिए। 10 ग्राम से आप कम मत करो, 10 ग्राम से ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कौन सा लगा रहे हैं फसल खरीफ में धान के अलावा?
1: खरीफ फसल में से धान लगाते हैं, करते हैं खरीफ फसल में।
0: तो और फसल का नहीं लगाएंगे अगर दूसरी फसल तो कैसे हम लोग खाएंगे फिर? कहाँ से लाएं?
1: राहर तिल लगाएंगे।
0: राहर तिल लगाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये राहर तिल जो आप लगाते हो इसका बीज उपचार जरूर करो। तिल का जो बीज उपचार है उसके लिए एजिटोबैक्टर एक नाम की जैविक दवाई आती है, जैव उर्वरक है वो एजिटोबैक्टर। तो वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन है जो जमीन में उसको पौधे को उपलब्ध कराता है। तो एजिटोबैक्टर 10 ग्राम और ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम 20 ग्राम 1 किलो बीज में उपचारित करके तिल को आप लगाओ इस बार, और अपने उसके लिए प्रयोग के लिए थोड़े से भाग में, जरा सा भाग में बिना उपचारित लगा देना, और आपको फर्क जो दिखेगा वो फिर इनको पंचू भैया को बताना आके कि बीज उपचार का क्या फर्क हुआ। तो एक तो आप तिलानी फसल का कर दो, और ऐसे ही आप दूसरी क्या फसल बताए?
1: राहर का।
0: राहर, राहर के लिए राइजोबियम कल्चर और ट्राइकोडर्मा। राइजोबियम कल्चर ये मिलता है वहाँ पे, जांजगीर से हो आप तो जांजगीर में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे वो कल्चर उपलब्ध कराएंगे आपको। ये 10 ग्राम राइजोबियम कल्चर और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 20 ग्राम से इसको अरहर को उपचारित करके लगाएंगे तो उसमें आपको जो पौधे अच्छे आएंगे, अरहर में उठा रोग लगता है उससे बचत होगी, तिल में रोग आ जाता है पत्तियों में उससे बचत होगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया।
2: मरावी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि बेरा निकाल के अपन फोन लगाया। डॉक्टर साहब मंथ होते कि अभी बेरा जो खरीफ फसल के जो बीज उपचार है ओकर विधि और सावधानी के बारे में आऊ गोड़ बात करे के मन होते, लेकिन बेरा होते कार्यक्रम में विदल है। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन हमारे किसान भाई मन जो फोन से उनका समाधान ला बताया। संगवारी हो आज की विषय रिसावे खरीफ फसलों में बीज उपचार और विधि और महत्व और सावधानी हमन कौन प्रकार से करी। आज हमारे बीच में पहुना आय रिसावे डॉक्टर आर के एस तिवारी, ये मन हमारे प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के। डॉक्टर साहब अपन के बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन बेरा निकाल के आया और हमारे किसान भाई मन उनका सलाह बताया।
0: धन्यवाद।
2: संगवारी हो कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग दे हवाए सौरव केसरवानी मन। यही कार्यक्रम संग पंचू भेला देव विदा। जय जोहार, राम राम।
3: आज हमर फोन इन कार्यक्रम के विषय हिसाब है खरीफ फसलों में बीज उपचार का महत्व एवं सावधानियां। एवं विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर आर के एस तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, और मन सुगट बात करत रहीन हमर पंचू भाई, जेमा कतका सुगर ढंग ले बताइन कि फसल में बीज उपचार करना काबा जरूरी है। एक ठन टीकाकरण आए और बीज उपचार कीड़ा बीमारी ले खचित पर जाते, स्वस्थ बीज है जामते। ट्राइकोडर्मा जो बीज है एला एक उपचारित करके अच्छा ढंग ले काम करना चाहिए। आपन कितका अच्छा ढंग ले सुना और सुन के ज्यादा ज्यादा लाभ उठा, यही बात ला हमन सुनत हन। अब मऊरे आमा गम के अमरैया

संगवारी हो, ये सुघर गीत सुनात रहने साध राम राबी और सैल बाला थ्रू। अब आप मला बतात मंडी मौसम की, तो जिसे जानकारी मिले है तेकर अनुसार पाछू 24 घंटा में सबले कम तापमान रही से 25 डिग्री सेल्सियस और सबले ज्यादा तापमान रही से 38 डिग्री सेल्सियस। आज बिलासपुर मंडी में धान 1001 के भाव रही से 2370 रुपए क्विंटल, नींबू के भाव रही से 4500 ले 4800 रुपए क्विंटल, कुंदरू के भाव रही से

धान 1001 के भाव से 2370 रुपए कुंटल, नींबू के भाव से 4500 ले 4800 रुपए कुंटल, कुंदरू के भाव से 3000 ले 3200 रुपए कुंटल, पत्ता गोभी 800 ले 1000 रुपया, करेला 4000 ले 4200 रुपया, भिंडी जिलाराम के लिए घलो का तनेकर भाव से 1200 ले 1400 रुपये कुंटल, कटहल 2800 ले 3000 रुपये कुंटल, कुमड़ा 700 ले 900 रुपये कुंटल। अब आप बता रहे समसामयिक कृषि काम, तो ये समय ग्रीष्मकालीन मूंग उड़ीद के जौन बुआई है ओकर बड़ा अच्छा समय है बुआई कर लो। और लता वाला सब्जी फसल जैसे गिलकी है, लौकी है, तरबूज है, एक रोपण कर दो। और फसल के फल उद्यान लगाए पर बहुत अच्छा समय है, तो वो भी लगा सकते हो। और ग्रीष्मकालीन बुआई करो एकदम ठीक समय आवा है। ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई करना है, जेमा मूंग उड़ीद तिल मक्का और ज्वार चारा बर बुआई अपन कर सकते हो, है ना। संगवारी हो तो रही समर आज के ग्राम सभा कार्यक्रम कैसे लगी तिलक हचित चिट्ठी पत्री में लिख के बताहा, काबर के आपके भेजे चिट्ठी पत्री है ही हमला मया देते संकेत देते कि आप लोग का चाहिए। अब तो जात मिलात मैं ही की यहाँ के तोर बिना लागत थे जिंदगी के हुई अंतरी, अब तो आजा मोर मैरू आ गया बसंत री, आ गया बसंत री, मोरे आमा गम के ठाढ़े देख दिया के जरत ही, ललिया के ठेमर टिशु है आखिले आंसू जरत ही, है ना। जैसे शकुंतला एक दिन मिलिस वो हवा दुष्यंत रे आ जा रे मोर मैरू आ गया बसंत रे। यही बात के संग अंजलि भाई ला के दो घर जाके जात मिलात जम्मू संगी संगवाले दीदी मतारी मल्ला अंजोरी भाई की जय जोहार, राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं FM MHz पर। रात्रि के इस वक्त 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस महफिल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस के गाए हुए कुछ बेश कीमती गैर फिल्मी तराने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला नगमा हंस राज हंस की पुरकशिश आवाज में।

हंस राज हंस की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से नगमे को। श्रोताओं, सुगम संगीत की आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ गैर फिल्मी तराने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला मोती हंस राज हंस की ही आवाज़ में।

श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस के गाए हुए कुछ बेशकीमती तराने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत हंस राज हंस की आवाज में।

0: शेखर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, इसके साथ ही सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम।

श्रोताओं, हमारा देश बहुतेरे विभूतियों, मनीषियों और कला गुरुओं का देश रहा है। हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना का फलक इतना विशाल है कि उसमें अनेक संस्कृतियों, परिवेशों और परंपराओं की झलकियां सम्मिलित की जा सकती हैं। हमारे देश के प्रत्येक प्रांत और अंचल के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की कालजयी रचनाओं का अनुवाद अब तक विविध भाषाओं और रूपों में किया गया है, ताकि जनसामान्य को उन रचनाओं, उनकी भावनाओं और

अभिव्यक्तियों के रसास्वादन का भरपूर लाभ मिल सके। ऐसे ही महान भारतीय कवि, दार्शनिक, साहित्यकार और चित्रकार हुए हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पूरा विश्व गुरुदेव के नाम से जानता और पहचानता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध काल जयी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से 1913 में विभूषित किया गया और इस तरह वो बन गए गैर यूरोपीय किंतु पहले एशियाई साहित्यकार कलाकार। गुरुदेव ने राष्ट्रगान की रचना की। उनकी लिखी रचना को भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी राष्ट्रगान का दर्जा हासिल हुआ। भारत में जनगणमन और बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला का दर्जा उन्हें हासिल हुआ। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में शांति निकेतन जैसे एक ऐसे रचनात्मक परिवेश का सृजन किया जहां हजारों विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने संगीत और दर्शन की शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य निर्धारित किया। साथियों, हम आपको बता दें कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता हुए देवेंद्रनाथ टैगोर और माता हुई शारदा देवी। गुरुदेव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सदैव पारंपरिक शिक्षा की जगह रचनात्मक शिक्षा दीक्षा पर जोर दिया और विश्व भारती जैसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय का निर्माण किया। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा नाम से उल्लेखित किया और इसके पश्चात पूरे देश ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित और विभूषित किया। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है साहित्य, शिक्षा, संगीत और दर्शन के क्षेत्र में बेमिसाल कार्य कर गुजरने वाले गुरुदेव के जिक्र से। तो उनके विषय में बात करते हुए हम आपको बता दें कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, उपन्यासकार, नाटककार, लघु कथाकार, संगीतकार और चित्रकार हुए। गुरुदेव की असंख्य रचनाएं ऐसी हैं जिन पर विविध भाषाओं में गीत बने और बेहद पसंद किए गए। आइए आज उनके जन्मदिन के इस उत्सव के रूप में हम सुनते हैं उन्हीं की एक उत्कृष्ट रचना को इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, रजनीगंधा की आज की इस महफिल में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे साहित्यकारों और रचनाकारों के विषय में जिनकी कृतियां आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य जगत का प्रत्येक पाठक या पाठिका उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आज भी पढ़ता है, मनन करता है और चिंतन भी करता है। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे एक ऐसी बेजोड़ बेबाक लेखिका और रचनाकार के विषय में जिन्होंने अपने समय के तमाम रूढ़ियों का खंडन किया, टैबूज तोड़े और अपने हिस्से की जमीन और आसमां को खुद तलाश किया और ऊंची से ऊंची परवाज ये भरती रहीं। और फिर एक दिन इन्होंने कहा कि मैं तैनू फिर मिलांगी, किथे कैसे नहीं जानदी। जी हाँ, ये हुई 20वीं सदी की प्रमुख और प्रखर पंजाबी कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार जिन्हें भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द और स्त्री चेतना पर मुखर लेखन के लिए सदैव याद किया जाता है। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनमें पिंजर और रसीदी टिकट बहुत प्रसिद्ध हुई। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला रचनाकार बनी और बाद में ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुई। इनका नाम हुआ अमृत कौर, यानी अमृता प्रीतम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमृता प्रीतम के विषय में। एक

अगस्त 1919 को गुजरावाला, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, वहां इनका जन्म हुआ। साहित्यकार पिता करतार सिंह हितकारी के प्रभाव में आते ही ये लिखने लगी और महज 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने माँ को खोया, लेकिन लेखन की तरफ इनका झुकाव बरकरार रहा। अमृता प्रीतम को 1947 के बंटवारे के समय हमेशा अपना देश, अपनी धरती याद आता रहा। ये लाहौर से दिल्ली चली आई। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आँखा वारिश साहनू, आज बारिश शाह से कहती हूँ, विभाजन के समय महिलाओं पर हुए अत्याचारों का प्रतीक बन गई। ये कविताएं लिखती रहीं, कहानियां लिखती रहीं, उपन्यास और आत्मकथाएं भी लिखती रहीं। अमृता अपनी बिंदास शख्सियत, निडर लेखन और दुख की सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती रहीं। इन्होंने नारी जीवन के कुछ यूं अनछुए पहलुओं को अभिव्यक्त किया अपनी रचनाओं में कि ये सबसे अलग, अलहदा रचनाकार के रूप में अपना परचम लहराती रहीं। इन्होंने इमरोज के साथ मिलकर नागमनी जैसी साहित्यिक पत्रिका का भी ये स्थापना करती रहीं और इसे चलाती रहीं। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता। और अमृता प्रीतम के जीवन में उनके साथ ही आसपास रहने वालों ने बताया है कि उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन उन्होंने हर बार अपने रूढ़ियों को तोड़ा और एक अलग जहां की कल्पना वो करती रहीं और कैनवास पर, यानी अपने रचनात्मक परिवेश और फलक पर उन्हें उकेरती रहीं जैसा कि वो जीना चाहती थीं अपनी शर्तों पे। उन्होंने आकाशवाणी में भी कई प्रोग्राम्स दिए। आज उन्हीं के लिखे एक गीत को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उन्हें याद करते हैं उनकी इस रचना के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज कार्यक्रम में हम कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों की उत्कृष्ट रचनाओं को याद करते हुए उन सृजनकर्ताओं को भावांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ साहित्य, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि जन सामान्य और लोक कल्याण के लिए भी बहुत सारी ऐसी रचनाओं का सृजन किया जिनसे आज भी हम लाभान्वित होते रहते हैं और समय समय पर उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इसी कड़ी में अब कुछ पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाती हूँ। ये पंक्तियाँ हैं, चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाएं, चाहे सौगुन फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये पंक्तियां हैं बाल कवि बैरागी की। जी हाँ, बाल कवि बैरागी राजनीति एवं साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में जुड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तथा लोकसभा के सदस्य भी बने। इनकी कविताओं में साहित्य और राजनीति की झलक मिलती है। इनका जन्म मंदसौर जिले की मानसा तहसील के रामपुरा गांव में 10 फरवरी 1931 को हुआ। गीत, दर्द, दीवानी, दोटुक, भावी रक्षक देश के, आओ बच्चों गाओ बच्चों इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने काफी सारा साहित्य बच्चों के नाम भी लिखा। बैरागी की जो भाषा थी वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुआयामी थी। उनके काव्य में हिंदी, मालवीय, निवाड़ी और संस्कृत भाषा का बहुत ही खुलेपन से उपयोग किया जाता और इन्होंने बहुत सारी रचना ऐसी लिखी है जिन पर हिंदी फिल्मों के गीत भी बने हैं। आइए आज बाल कवि बैरागी की उत्कृष्ट साहित्य सृजनात्मक सफर को याद करते हुए सुनते हैं एक बेशकीमती तराना।

श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के सदाबहार सफ़र में हम याद कर रहे हैं उन रचनाकारों को जिनके गीतों ने हिंदी फिल्म जगत को भी महकाया है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के अमर गीतकार, कवि और फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। ये हुए गोपाल दास नीरज। जी हाँ, नीरज ने प्रेम, विरह और जीवन के दर्शन पर आधारित कई प्रसिद्ध कविताएं और गीत लिखे। उनके गीत लिखे जो खत तुझे और कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे बेहद मकबूल हुए। हिंदी सिनेमा के लिए 200 से भी अधिक यादगार गीत लिखे नीरज ने और 3-3 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीता। नीरज पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने काव्य मंचों पर भी अपना परचम लहराया। इनके काव्य पाठ का ये आलम होता था कि रात रात भर इनको सुनने और देखने वाले कड़ी धूप में या फिर बेहद ठंडी की रातों में इन्हें सुना करते। भोर हो जाती लेकिन लोग इनके रचनाओं को सुनते रहते, रस लेते रहते। ऐसे हुए हैं नीरज। तो आइए नीरज की रचना का भी रस लेते हैं, आनंद उठाते हैं।

0: श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के इस कार्यक्रम में हमने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, बाल कवि बैरागी और नीरज की रचनाओं को याद किया, उनके सांगीतिक सफ़र को हमने सुना और महसूस किया। मंजरों में तब्दीली बस नज़र में रहती है, हम भी होते जाते हैं क्या से क्या नहीं मालूम। एक माइक्रोफोन है और एक रजनीगंधा की ये महफिल, यहीं से झांकती हैं हजार हजार जिंदगियां, हजार हजार झलकियां। फिर होगी अगले किसी कार्यक्रम में आपसे यही मुलाकात। दीजिए इजाजत आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की

0: सरकार बनी है हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।

0: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले

0: 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने

0: आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार का नव प्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11 बजे हम समाचारों के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से। तो चलिए फिलहाल इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: पदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब कब बात बोलू साहब।

0: बजी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे।

0: की है फेरी है और मौत की है फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
2: इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
3: वस्त्र कंधे पर रखने
2: सिकंदर सिकंदर क्या मत की कुछ लोग मेरे यार चरण से झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
2: नहीं
4: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी तुम्हें हुई नहीं होती।
2: बस बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब
2: क्या काम नहीं तेरे मेम साहब है जिससे तू?
5: नहीं
4: हाँ विशाल मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
2: नहीं
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया
2: सिकंदर। ये तुमने क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल।

सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है, एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, छाया गीत के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन, लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें, पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चितचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारें बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को? होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। ये आदमी उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित